0: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM
1: लोकेशन लोकेशन लोकेशन इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियो अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
2: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई अप्रिसिएशन
1: फुल्ली फर्निश्ड टाउनहाउसेस एंड विलास विद प्रीमियम इटालियन फर्निशिंग्स
2: स्टेप आउटसाइड एंड एंजॉय 50+ एमिनिटीज इनसाइड द मास्टर कम्युनिटी
1: एंड द बेस्ट पार्ट टाउनहाउसेस एंड विलास ग्रीन्स स्टार्ट फ्रॉम जस्ट £711,000
2: टू बुक कॉल आवर लंदन ऑफिस ऑन 02039635757 ग्रीन्स बाय डैनियो प्राइम लोकेशन
1: High appreciation
2: in Dubai.

0: अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस।
1: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
2: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
1: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
2: And you didn't pay those massive roaming charges?
1: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
3: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
4: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए? लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज। रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड। जल्दी करिए, कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com।
5: बॉलीवुड के लेजेंड कलाकार सिर्फ लाइका गोल्ड पर।

अपना नाम नहीं है बन्ने खां भोपाली। मुन्ने मियां बधाई बनो खूब होनहार, दोनों जहां की नेमतें हों आप पे निसार। हाँ

0: Laika Gold. Laika Gold.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208574-8410। दैट्स 0208574-8410।
2: साउथ हॉल ट्रेवल at all protected.
3: You know how fans shout at football matches?
4: Oh, wake up!
3: That's because sound is the most effective way to tell the players they're rubbish. Works in advertising too. Because when you amplify your advertising using radio, your campaign is 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
5: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइका रेडियो सेल्स ऑन 0207-132-1458 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk।
6: रात भर न थमे न रुके, क्लासिक नगमे आपके अपने लाइका गोल्ड पर

0: लाइका गोल्ड
1: लोकेशन लोकेशन लोकेशन इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियल अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
2: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई अप्रिसिएशन
1: फुल्ली फर्निश्ड टाउनहाउसेस एंड विलास विद प्रीमियम इटालियन फर्निशिंग्स
2: स्टेप आउटसाइड एंड एंजॉय 50+ एमिनिटीज इनसाइड द मास्टर कम्युनिटी
1: एंड द बेस्ट पार्ट टाउनहाउसेस एंड विलास ग्रीन्स स्टार्ट फ्रॉम जस्ट £711,000
2: टू बुक कॉल आवर लंदन ऑफिस ऑन 02039635757 ग्रीन्स बाय डैनियल प्राइम लोकेशन
1: हाई अप्रिसिएशन
2: इन दुबई
3: Ears are great, aren't they? One on each side of your head for stereo. It's because of ears that radio ads can amplify your advertising. 40 million adults listen to commercial radio every week. That's 80 million ears, give or take. See radio differently at radiocentre.org.
4: Bollywood ke legend kalakar, sirf Laika Gold par.

उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाइए। एक ना हुक्मी बख्शीश एक हुक्मी सदा भुआइए। हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोए। नानक हुक्मे जे बुझे ताहू मैं कह न कोय। गावे को तान होवे किसे तान गावे को दात जाने निशान। गावे को गुण वडियाइयां चार गावे को विद्या विखम विचार। गावे को साज करे तनखे गावे को जी लै फिर दे। गावे को जापे दिसे दूर गावे को वेखे हादरा हदूर।

मन होए जे को मन जाने मन कोए मन्ने मार्ग ठाक ना पाए मन्ने पथ्यों प्रगट जाए मन्ने मग ना चले पंथ मन्ने धर्म सेती संबंध।

लख दरियाओ कुदरत कवन कहाँ विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख भाव असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पक्षार असंख मोन लिवलाय तार कुदरत कौन कहावी।

असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड़ हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भाव है साई वलिकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

करते तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी हो।

जिव तिस दी वडियाई, जो तिस भावे सोई करसी, हुक्म ना करना जाई, सो पातशाह साहब नानक रहन जा।

अनाहत जुग जुग एकोवेश आसन लोय लोय भंडार जो कुछ पाया सो एकावार कर कर वेखे सृजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एकोवेश एक दूजी बो लख होवें लख होवें लखवीस लख लख।

जोर ना जुगती छुटै संसार, जिस हथ जोर कर वेखे सोए, नानक उत्तम नीच ना कोए। राती रुती चित्ती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथे सोहन पंच परवान, नदरी करम पवै निशान, कच पकाई उथे पाए, नान गया जापै जाए।

0: वेडिंग्स, सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
1: कुछ आवाजें सिर्फ गाती नहीं, जिंदगी भर याद रह जाती हैं। और अब वही खूबसूरत आवाज पहली बार आ रही है यूके। इंडियन आइडल फेम सुगंधा डाटे लाइव इन कॉन्सर्ट Sunday the 6th of September at the Mesha Lohana Center, London. Apni seats abhi book kijiye. For more information, call Ashwin on 07956-278-228. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
2: Across Greater London, this is Kajal on

0: इज लाइक अ गोल्ड। ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208782883 और विजिट ट्रेवल हब world.com।
1: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
1: विजिट ट्रेवल हब world.com।
2: Get ready, UK. Snell Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi, and more surprises on the night.
3: Expect music, madness, family entertainment, and non-stop laughter. Snell Grover Live UK Tour 2026, happening on the 29th of October at the Over Arena, Wembley in London.
2: 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
3: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite, and AXS.
2: For more information, contact 07585-801-801. Official radio. Your partner, Leica Radio Network.
4: वॉटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी।
5: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन।
4: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
5: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस वॉटफुट। कॉल 01923227274। बुक योर टेबल टुडे।
6: Dad, Dad, Dad!
7: What's wrong, beta?
6: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to Daddy in India.
7: I will run down to the money exchange now.
6: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
7: Oi, bale bale! I'm gonna tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
6: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
8: Hare Krishna.
9: Celebrate Krishna Janamashtami in a truly vibrant way. Join us on Sunday the 30th of August from 2 p.m. to 8 p.m. at Navnath Centre, Printing House Lane, Hayes, UB3 1AR. Live music, Ramayan play, Ras Leela, delicious food, fun fair, shopping and free entry with free

0: What a classic. Aasha Bhosle, Kishore Kumar on the vocals from the hit film Jawani Diwani.
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, poojasweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: And gold is trading at £106.83 sterling per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, poojasweets.com, or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
0: So well done to all those who got the answer right this morning. We are celebrating 28 years of the Mani Ratnam director film Dil Se, starring Shah Rukh Khan, Manisha Koirala and Preeti Zinta. Released on this day, in fact, in 1998, with music composed by A.R. Rehman. I have a beautiful classic up next.
2: Like a Gold.
1: Like a Gold. Traffic and travel.
3: Good morning, the M11 South at North Circular Road. We've got 10-minute queues. The A12 at Redbridge Roundabout also slowing westbound. And we've got the A1 southbound now through Boreham Wood at Stirling Corner, queues around 10 minutes. M4 onto the elevated section, usual delays from Hayes to Brentford, and the A2 Shooters Hill Road slowing west from Blackheath Common to Deptford Bridge. To Docklands Light Railway, faulty train at Poplar, remains no service between Langdon Park and Poplar, and Windrush London Overground Line. We've got no service between Surrey Quays and New Cross with an unsafe structure to the railway. And that's the latest traffic and travel.
4: Transforming your home is as easy as Dunelm. Thanks to Dunelm's summer savings, there's up to 50% off selected pieces. From furniture and mattresses to rugs, decorating and more. On now until Bank Holiday Monday. Save in-store, online, on the app and with free click and collect at Dunelm.
5: The home of homes.
1: Yeah.
2: Like a gold.
1: Like a gold.
6: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस. उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत.
7: 07300998823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को. सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे. विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823.
8: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है. शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए. गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब हैं. जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी. आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉग के शोरूम्स में आइए या फिर keyfurniture.co.uk पर जाएं. वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
9: हेरल्ड, न्यू वर्ल्ड ऑफ इको friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalog today. Call on 0208 507 7900 or download the catalog from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
10: इस दिसंबर ठंड को बोलो गुड बाय.
11: जॉइन महाराजा टूर्स ऑन अ 14 नाइट कैरिबियन क्रूज डिपार्टिंग 6 दिसंबर विद डायरेक्ट वर्जिन फ्लाइट्स फ्रॉम हीथ्रो टू बारबेडोस. खूबसूरत बीचेस, सनशाइन और 8 अमेजिंग कैरिबियन आइलैंड्स आपका इंतजार कर रहे हैं. प्राइसेस फ्रॉम जस्ट £1,499 पर पर्सन, ट्विन शेयर. सीट्स लिमिटेड है तो आज ही बुक कीजिए. विजिट maharajatours.co.uk or call 07956154846.
12: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
13: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
12: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
13: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
12: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
13: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. Limited offer. Terms and conditions apply.
14: Tasty swag and sweet charm. Every spoon feels like a tropical warm. Make puri and amras or milkshake full. Taste itna pure, ho jaye happy soul.
15: Mango season has arrived. You're also with Jaimin's Mango Pulp. No added preservatives or colors. Only purest taste of mangoes.
14: Jaimin Foods Mango Pulp. Available now.
16: Asian Achievers Awards. Friday, September 18th at London Hilton Park Lane. Exclusive radio partner, Leica Radio Greater London.
17: Hey, this is Sandy Shah, and if you love your 40s and 50s music, then join me on Vintage Gold every weekend between 7 and 10 p.m. on Leica Gold. Make it a date.

0: to London. This is Kajal on Breakfast.
1: सुनो सुनो अरे सुनो सुनो ए भाई और बहनो अरे मगन भाई छगन भाई सांबड़ो रे सांबड़ो ओ राघोबा ओ दोंडीबा आई का ओ

0: मुकेश और लता मंगेशकर के एवरग्रीन गानों की यादों में एक खूबसूरत म्यूजिकल शाम। पंकज सोढ़ा प्रेजेंट्स हम तो तेरे आशिक।
1: हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुरा।
0: स्वीट मेमोरीज ऑफ मुकेश एंड लता विद संगीता मेलेकर और मुख्तार शाह लाइव बैंड के साथ 29th अगस्त हेज एंड हाई स्कूल हैरो, 30th अगस्त वुडमैनस्टर्न स्कूल साउथ लंदन। डिनर फ्रॉम 5 PM, शो स्टार्ट्स एट 7 PM। फॉर टिकट्स एंड मोर इन्फॉर्मेशन कॉल दीपा ऑन 07947561947।
2: खाखरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जैमिन फूड्स का वाइब चेक।
3: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जैमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
2: जैमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
4: sonatours.co.uk 13 days Vietnam and Cambodia departures every month September to December. Get 100 off if you book this month. Call Sonatours now on 0208 951 0111.
5: Across Greater London, this is Kajal on Breakfast.

0: की नजर,
1: जहाँ जिंदगी वहाँ सार्थक।
2: हालो रे हालो, आज जन्माष्टमी कान्हा ना रंगमा लंदन पड़ रंगा से। स्टार्टअप मीडिया प्रेजेंट्स जन्माष्टमी भजन जैमिंग विद नंदलाल छांगा।
3: छोटी छोटी गैया, छोटी
2: भक्ति ना सुर, गरबानी मस्ती अने कृष्णा सेलिब्रेशन, ऑल इन वन अनफॉरगेटेबल इवनिंग। 5th September, Wembley. 6th September, Crawley. Tickets only £25. Book now. Call 07940924667. Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
4: Southall travel, 7 days a week. Southall travel, 24 hours a day, we're at our peak.
5: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
6: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
7: Southall Travel can take you there. Southall Travel, at all protected.
8: भारत वंशियों का सबसे बड़ा राष्ट्रीय त्योहार स्वतंत्रता दिवस समारोह इंडियन डायस्पोरा एंड हाई कमीशन ऑफ इंडिया बड़ी धूमधाम के साथ मना रहे हैं। 22 अगस्त शनिवार को नवनाइट सेंटर हेज में आइए और सबको लाइए फ्री एंट्री, पार्किंग, एंटरटेनमेंट, फूड, भारतीय व्यंजन, ध्वजारोहण और जनगणमन गायन 22 अगस्त शनिवार को सुबह 10 बजे से।
9: वॉटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी,
10: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन।
9: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
10: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस वॉटफुट, कॉल 01923227274। बुक योर टेबल टुडे।
11: स्लो, अब इंडिया का फेवरेट स्वाद बिल्कुल आपके पास।
12: बीकानेर वाला परंपरा भी, स्वाद भी।
13: बीकानेर वाला में एंजॉय कीजिए फेमस छोले भटूरे, राज कचौरी, मिठाई और बहुत कुछ। आज ही आइए 101-105 हाई स्ट्रीट हाउसलो, TW3 1QT। कॉल करें 07487-687-885।
14: 40 million people listen to commercial radio each week. That's 80 million ears, give or take. Amplify your advertising at radiocenter.org.
15: Laika Gold, London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB digital radio par. Alexa pe bolo play Laika Gold aur online suno laikagold.com pe.
16: Artist of the week is brought to you by our new podcast Laika Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: लाइका गोल्ड travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रैवल हब 24/7 और 0208782883 और विजिट travelhubworld.com
1: ट्रैवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड
1: विजिट travelhubworld.com
2: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
3: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
4: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश हिंदी गुजराती मराठी तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208922334 24 आवर

0: ਗੱਪੇ ਅਤੇ ਗੋਲ ਗੱਪਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ
1: All Mamster products are nut free and made in Canada now available at quality food branches
2: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय
3: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस
2: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री परफेक्ट फॉर कैफेज रेस्टोरेंट्स ऑफिसेज शॉप्स पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस
3: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम
2: रॉयल चाय ब्रूड फॉर बिजनेस
3: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com Limited offer. Terms and conditions apply.
4: 10 days South Africa every month from November to March. Book before the end of this month and get 200 off. Visit sonatours.co.uk or call 0208-951-0111.
5: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Making summer feel better. This

0: गुड मॉर्निंग। गोल्डन गीतों का खजाना लूट के ले जाना। लाइका रेडियो नेटवर्क पर यह है लाइका गोल्ड रेडियो और वही इसके स्टूडियो में मैं रवि शर्मा माइक्रोफोन के सामने आप सबको स्वागतम कहता हूँ। शुरू होता है मनोरंजन प्रोग्राम, एक एक गीत एक एक बात सब आपके नाम। आज शुक्रवार वर्ष 2026 के अगस्त महीने की 21 तारीख और वक्त ब्रिटिश घड़ियों में 10:05 हुआ चाहते हैं। अब से लेकर दोपहर बाद 1 तक भाई जुड़ जाइए रेडियो के साथ, करते रहिए अपने काम भी। हम काम में रुकावट नहीं बनते, सहायक बनते हैं। और साहब आप हमारे काम में सहायक बनते हैं। मेरी जलती आंखों में उतरी है ठंडक, बदन में ये खूने रवां थम गया है। शजर फूल तकते हैं हैरान होकर, महकता हुआ गुलसिता थम गया है। समंदर में मिलना था जाकर इसे तो, मोहब्बत का चश्मा कहाँ थम गया है। ये निराला मिलन है, ये जालिम समय भी जहाँ था वहाँ का वहाँ थम गया है। बड़े हैं मुबारक कदम इसमें किसके, ये जमीन थम गई है आसमान थम गया है।
1: Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
2: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
3: TravelHub.
2: At all protected.
1: Leica. Leica Radio Network.

0: क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम सुनीता।
0: लवली नेम।
1: थैंक यू।
0: गाएंगे आप मेरे साथ?
1: ना, डर लगता है।
2: डरो मत सुनीता, मैं हूं ना यहाँ, आ गाओ।
1: अच्छा।

0: भाई रहता है तो किराया ले लो, और क्या उस पीछे पड़ गए वो गा गा के उसको बंदे को जो है आप निकलवा के ही रहेंगे।
1: Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Very good morning. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रेट्स बताने जा रहा हूँ मैं। भारत पैसे भिजवाना चाहते हैं तो भारतीय मुद्रा में एक पाउंड के बदले दे आर गिविंग टुडे 130.25 रुपीज, 130 रुपए 25 पैसे। यू कैन ट्रांसफर बाय ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो एसबीआई यूके मोबाइल ऐप। Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Class, it's been reported that if we keep using water like we are now, by 2055 we could be short by 5 billion litres a day.
3: Hold on, miss. 2055? We'll be grown-ups by then.
4: We're not having that, are we?
5: No. Oi, hear that? It's water and cans.
6: And fix those drips and drops.
7: And take shorter showers, yeah?
6: Because when we work together,
3: it all adds up.
7: So come on, you lot. Search Let's Save Water.
8: ये है Lyca Gold.
9: Lyca Gold. अपनों को अपनों के करीब।
10: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस। उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।

0: Baker, Microwave Soup.
1: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena, Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
2: Location, location, location. Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas.
3: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
2: Fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
3: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
3: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danio, prime location,
2: high appreciation,
3: in Dubai.
4: Dad, Dad, Dad!
5: What's wrong, beta?
4: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to Daddy in India.
5: I will run down to the money exchange now.
4: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
5: Oi, bale, bale. I'm going to tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
6: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
7: Weddings, celebrations, corporate events, ragas and सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasun.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
8: साउथ हॉल, देसी स्वाद का असली अड्डा आ गया है.
9: परंपरा भी
10: बीकानेर वाला में मिलेंगे फेमस छोले भटूरे, टेस्टी स्नैक्स, मिठाई और फैमिली के साथ यादगार मोमेंट्स. आइए 60 किंग स्ट्रीट साउथ हॉल, UB2 4DB. कॉल 07795181001.
11: लुक, इट्स द बॉटम लिज दिस टाइम स्लाइडिंग अक्रॉस देयर कार बोनेट.
12: Leave them be, Philip. They just claim confident.
11: Claim confident?
12: Yes. By doing their own car finance compensation claim, using the FCA's free tools to help, they'll keep 100% of what they're owed. I've just done ours too. Come on!
11: Deirdre? Come back here.
13: Start yours today with help from the Financial Conduct Authority. Search Claim Confident.
14: रंजिशे सहे दिल ही दुखाने के.
15: आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है.
16: फील गुड ट्रैक ब्रॉट टू यू बाय डेरी वैली.
17: सॉफ्ट एंड टेंडर लाइक ग्रैंडमास वार्म हग. डेरी वैली पनीर इज मेड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स एंड जीरो प्रिजर्वेटिव्स. विजिट dairyvalley.net.
18: ना तो आज बरसात का मौसम, ना कहीं छाई बदरिया, फिर भी मोरे जिया रम चमके. अरे थम थम कोई बिझुरिया.
19: वाह वाह वाह, तुहार जवाब नाही

0: बदरा की बिजुरिया कैसी चमकी और बदरवा के होते होते पानी ना बरसे, भाई ये सब आजकल जो है देखने को मिल रहा है। पानी बरस भी रहा है तो जैसे तरसा तरसा के किसी प्यासे व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा पिलाते हैं ना, ठहर जा आएगी आएगी बारिश आएगी आएगी। देखो आज कह रहे हैं, देखते हैं भाई कितनी आती कब आती है। लेकिन मुकेश जी और साथियों की आवाज़ों में आपने ये गीत सुना फिल्म बंधन से, और जिस गीत के साथ प्रोग्राम की शुरुआत हुई वो गीत, भाई ये सीटी मारना बंद कर यार, मैं और कितना कम करूँ इसका वॉल्यूम। हाँ ठीक है, ओके अब नहीं आएगी। हाँ थैंक यू वेरी मच। हाँ आजकल सीटी का असर होता नहीं है, एक ज़माना था जब सीटी का असर बहुत ज़्यादा होता था। तो साहब जो पहला गीत था प्रोग्राम का वो हमने रविंद्र जैन की बनाई धुन पर, और कौन सा गंगा जैसा मन तेरा, दैट वाज टेकन फ्रॉम द फिल्म जंगबाज से। मौसम से जुड़े गीत सुनवाते हुए ख्याल आता, भाई हमारे पड़ोस में ना, मैं शीशे के अंदर दूसरे स्टूडियो में देख सकता हूँ, हमारी जो कुलीग है खुशबू ओवरकोट पहन करके स्टूडियो में आई है। मैंने कहा था ना ठंड इतनी ज़्यादा, भाई जब बाहर कड़ाके की गर्मी पड़ रही होती है तब भी स्टूडियो हमारे जमाने वाले। हाँ आप अगर भाई एक गिलास पानी ला के रखे थोड़ी देर में बर्फ बना के ले जाएँ यहाँ से, और ये ठंडे रखने पड़ते हैं, कहते हैं कि भाई मशीनें बहुत गर्म हो जाती हैं, भाई ठंड में सिकुड़ के हम, मेरा कद छोटा हो गया सही बताऊँ आपको। अभी खुश को भी वो शेर जाके सुनाना है कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजाई कहाँ है।
1: Brought to you by Derry Valley. Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
0: लाइका गोल्ड पर वही खबरों का समय हुआ जाता है, और खबरों में आजकल छाए हुए हैं भाई वो हैरी और उनकी पत्नी जो है मेगन। अब सोचने वाली बात यह है कि उनकी वापसी के कार्यक्रम को लेकर के खूब बातें हो रही हैं। एक तो भाई बच्चों की तालीम के लिए वो आ रहे हैं, चलो अच्छी बात है, यहाँ की एजुकेशन दिलवाना चाहते हैं। दूसरा ये है कि वो मेगन जो है ना वो एक्टिंग के फील्ड में वापस लौटना चाहती हैं। ठीक है भाई, काम तो काम है, करना है, आप आइए, स्वागत है आपका। लेकिन बस सवाल वही उठता है कि सिक्योरिटी पर आपकी जो खर्च होगा तो क्या वो रवि शर्मा की पॉकेट से जाएगा, मेरा मतलब टैक्स पेयर्स की जेब से जाएगा, या फिर भाई कुछ लोग कहते हैं कि उनका पर्सनल मामला, व्यक्तिगत मामला है, अपनी मर्जी से अमेरिका गए थे, मर्जी से वापस आ रहे हैं, पर टैक्स पेयर्स उनकी सिक्योरिटी पर होने वाला खर्च क्यों उठा रहे हैं, भाई इस पर चर्चा ये आपको खबरों में विस्तार से सुनने को मिलेगा। और क्या क्या है आज के प्रमुख समाचारों में, लेट्स फाइंड आउट। लाइका रेडियो नेटवर्क, अब आप रवि शर्मा से खास खबरें सुनिए। भारत से आने वाली खबरों में आज जयपुर ग्रामीण के एक सरकारी स्कूल का इंस्पेक्शन करने पहुंचे काकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता स्पोक्सपर्सन आशुतोष रांका, और भी कार्यकर्ताओं को साथ ले गए। भाई दिल्ली में जंतर मंतर पर बैठने से जो कामयाबी उन्हें मिली कि उनकी डिमांड थी कि एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा लिया जाए, वो ले लिया। अब वो कहते हैं अब हम और आगे बढ़ेंगे, और अब वो केंद्र से निकलकर दिल्ली से निकलकर जयपुर पहुंच गए हैं। वहाँ एक गांव ग्रामीण इलाके में पढ़ने वाले स्कूल की विजिट करेंगे वहाँ पर, और वहाँ जाकर के वो डिमांड करेंगे स्कूल की हालत सुधारी जाए, बिल्डिंग बनाई जाए, दीवारें ठीक की जाएँ, बच्चों के लिए फैसिलिटी हो। अब साहब जैसे अब वो पूरे हिंदुस्तान में घूमेंगे, लेकिन सुनने में आ रहा है कि वहाँ उनका बड़ा विरोध हुआ। आरोप है कि ग्रामीणों ने उनके साथ मारपीट भी की, गांव वाले कहते हैं बाहर निकल जाओ, हमारे बच्चे हमारा स्कूल, आगे राजनीति करने दे। एनीवे वीडियो में आई है वहां की, उसमें दिख रहा है कि ग्रामीण लोग जो है वो जय श्री राम के नारे लगाते हुए कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को गांव से बाहर जाने के लिए बोल रहे हैं। सीजेपी की एक स्पोक्स पर्सन आशुतोष राका ने इल्जाम लगाया है कि गांव में बीजेपी के बुलाए हुए लोग विरोध करने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि इस तरह के विरोध से वो डरने वाले नहीं है। राजनीति साहब, पाकिस्तान की बात करें तो मेडिकल जांच के बाद इमरान खान को फिर से अडियाला जेल भेज दिया गया है। पाकिस्तान की सूचना मंत्री, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अताउल्ला तरार ने सोशल मीडिया पर बताया कि फॉर्मर वजीर आजम इमरान खान को मेडिकल जांच के बाद अस्पताल से वापस अडियाला जेल भेज दिया गया है। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 20 और 21 अगस्त की दरमियानी रात इमरान खान को कड़ी सिक्योरिटी के बीच अस्पताल ले जाया गया था। उन्होंने बताया कि आंखों के डॉक्टर, हृदय रोग विशेषज्ञ और फिजिशियन समेत एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम ने इमरान खान की विस्तृत मेडिकल जांच की और उन्हें चिकित्सीय रूप से हेल्दी पाया। ठीक है वो। अताउल्ला तरार के मुताबिक इमरान खान की बहन उज़्मा खान जांच और इलाज की पूरी प्रक्रिया के दौरान, पूरे प्रोसेस में वो उनके साथ मौजूद थी। हालांकि भाई इस बताया जा रहा है कि इमरान खान को कल देर रात रावलपिंडी की अडियाला जेल से इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल ले जाया गया था, लेकिन बाद में उन्हें वापस जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। हालांकि इस मामले में अफसरों की ओर से और सरकारी तौर पर अस्पताल एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से भी कोई ऑथेंटिक बयान जारी नहीं किया गया है। भारत से खबर आ रही, बहुजन समाज पार्टी की चीफ मायावती ने वंदे मातरम के गायन को लेकर चल रही पॉलिटिकल बहस पर रिएक्ट किया है। उन्होंने कहा कि देश में इस बात को लेकर राजनीति करना ठीक नहीं है। वंदे मातरम पूरा गाया जाए या इसके शुरुआती दो छंद गाए जाएं या इसे ना गाया जाए। मायावती ने एक्स पर लिखा कि वंदे मातरम के गायन को लेकर हाल ही में संसद में जो कानून पास किया गया है, ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा है, पहले भी हुए हैं कानून पास। उन्हें कहा कि केंद्र और राज्यों में सत्ता परिवर्तन के दौरान पॉलिटिकल पार्टियां अक्सर अपने पॉलिटिकल स्वार्थ या फायदे के हिसाब से पहले की सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों में बदलाव करते रहते हैं। इसराइल का वेस्ट बैंक सेटलमेंट प्रोजेक्ट क्या है, इस पर ब्रिटेन समेत 5 देशों ने ऑब्जेक्शन किया है। इसराइल ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक के रणनीतिक रूप से स्ट्रेटेजिकली एक महत्वपूर्ण इलाके में करीब 1200 नए सेटलमेंट घर बनाने के लिए टेंडर जारी करने की योजना बनाई है। इस फैसले की अमेरिका के कुछ खास सहयोगी देशों ने भी कड़ी आलोचना की है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और कनाडा ने एक सांझे बयान में इस फैसले को नाकाबिले मंजूर बताया है और इसराइल से इन योजनाओं को तुरंत वापस लेने की अपील भी की है। और जनाब, अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने न्यूयॉर्क की एक महिला को गिरफ्तार किया है। उस पर इल्जाम है कि वो आल्बनी में राज्य की कैपिटल बिल्डिंग, वो जो बड़ी ऊंची बिल्डिंग है, कैपिटल बिल्डिंग को बम से उड़ाकर वहां मौजूद सांसदों को मारने की योजना बना रही थी। अभियोजकों के मुताबिक 35 साल की जेसिका बीवी ने पहले ही इस्लामिक स्टेट के प्रति अपनी वफादारी जताई थी। उस पर एक ऐसे विदेशी टेररिस्ट संगठन को मदद या संसाधन देने का आरोप लगाया गया है, जिसे अमेरिका ने टेररिज्म का ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर रखा है। क्रिमिनल शिकायत के मुताबिक बीवी ने कथित तौर पर अंडरकवर एजेंट से कहा था कि मैं इमारत का जितना हो सके उतना हिस्सा नष्ट करना चाहती हूं और सीनेटर्स को मारना चाहती हूं। बताया जा रहा है कि बीवी ने न्यूयॉर्क की स्टेट कैपिटल बिल्डिंग को इसलिए चुना क्योंकि उसे लगा कि यह व्हाइट हाउस की तुलना में आसान निशाना रहेगा। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए जरूरत पड़ती तो वो ईरान पर 100 बार और हमला करने से भी पीछे नहीं हटते। एक इंटरव्यू में उन्होंने ये दावा किया कि अगर वो ईरान पर कार्रवाई नहीं करते तो आज इसराइल और पूरा मिडल ईस्ट तबाह हो चुका होता। ये थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त होते हैं।
2: ये है Like a Gold, tasty track of the hour, brought to you by Coca Noodles.
0: लौटाइए फिर से संगीत की तरंगों की तरफ, उमंगों की तरफ, और सुनिए आशा भोसले और किशोर कुमार को।

0: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester, and the Midlands. Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
2: और साउथ ओल ट्रैवल याद दिला रहे हैं भाई, दुबई के लिए उनके पास जो है बड़ी ज़बरदस्त डील्स हैं। एंड भैया, अगर आप कहाँ हैं वो डील्स, यही वो कह रहे हैं कि पहले एक बार जो आदेश जारी हुआ था कि भाई वह ज़रूरी हो तभी जाएं, दुबई वो सब उठा लिया है। अब वहाँ पर सैलानियों को इनवाइट किया जाता है, आप पहुंचिए सैर सपाटे के लिए। और साउथ ओल ट्रैवल इज़ नॉन फॉर कम्पिटिटिव हॉलीडेज डील्स टू दुबई, तो उनसे संपर्क कीजिए। साउथ ओल ट्रैवल का फ़ोन नंबर है 02085748410 एंड साउथ ओल ट्रैवल इज एट ऑल प्रोटेक्टेड।
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
3: Class, it's been reported that if we keep using water like we are now, by 2055 we could be short by 5 billion litres a day.
4: Hold on, miss. 2055? We'll be grown-ups by then.
5: We're not having that, are we?
4: No. Hear that? It's water and cans!
6: And fix those drips and drops.
7: And take shorter showers, yeah?
6: Because when we work together,
4: it all adds up.
7: So come on, you lot. Search Let's Save Water.

0: लता मंगेशकर की आवाज, सॉन्ग टेकन फ्रॉम फिल्म खून पसीना। मुझे याद है भाई यूनिवर्सिटी के दिनों की बात, जब मैंने पूछा लड़की से कि कौन सी फिल्म देखने जा रही हो आज, तो वो पूरा नाम ना बताए, वो कहे खून असीना। मैंने कहा ये कौन सी फिल्म, खून असीना। बाद में पता लगा भाई वो अपनी लिपस्टिक खराब नहीं करना चाहती थी, होठ मिले पसीना कहे तो वो लिपस्टिक खराब हो सकती थी।
1: ये है लाइका गोल्ड। Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: खून पसीना फिल्म का गीत सुनाने के बाद अब मैं बता रहा हूँ आपको भाई, रेट्स लेमफाई के नोट कर लीजिए, एक पाउंड के बदले इन डिफरेंट करेंसीज कितना दे रहे हैं वो, भारतीय करेंसी में 130.78 रुपीस फॉर वन पाउंड, पाकिस्तानी 379.3, श्रीलंकन रुपए 450.46, बांग्लादेशी टके 167.35 और अफगान अफगानी 90.06।
1: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Manoranjan with Ravi Sharma. Like a
1: gold rate brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury, and Cardiff.
0: और साहब गोल्ड का रेट बता दूं, नोट कीजिए, आज सोने का भाव काफी ऊपर चढ़ गया है। The gold is sold at the rate of 107.84 pounds per gram.
1: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
3: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस, उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।
4: स्टारडम मीडिया प्राउडली प्रेजेंट्स जन्माष्टमी भजन जैमिंग विद द सोलफुल नंदलाल छांगा।
5: गोविंद बोलो हरि गोपाल,
6: कृष्णना जन्मनो आनंद उत्सव, एकज रात एकज अनुभव।
5: नंद घर आनंद भयो जय करे।
4: 5th September at Wembley, 6th September at Crawley. Tickets only £25. For tickets booking, visit Eventbrite, Skiddle, Videorama or StardomMediaLTD.com.
6: Stall and sponsorship mate call 07940924667. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
7: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410, दैट्स 85748410।
8: साउथ हॉल ट्रेवल ऑटो प्रोटेक्टेड।
6: मुकेश और लता मंगेशकर के एवरग्रीन गानों की यादों में एक खूबसूरत म्यूजिकल शाम, पंकज सोठा प्रेजेंट्स हम तो तेरे आशिक,
9: तुम तो तेरे आशिक है सदियों पुरा।
6: स्वीट मेमोरीज ऑफ मुकेश एंड लता विद संगीता मेलेकर और मुख्तार शाह लाइव बैंड के साथ, 29th August हेच एंड हाई स्कूल हैरो, 30th August वुडमैनस्टोन स्कूल साउथ लंदन, डिनर फ्रॉम 5 PM, शो स्टार्ट्स एट 7 PM। फॉर टिकट्स एंड मोर इन्फॉर्मेशन कॉल दीपा ऑन 07947561947. Location, location, location. Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
10: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
10: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
10: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Daniel, prime location,
6: high appreciation
10: in Dubai.
11: बाय।
12: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है। शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो पिकलवुड और स्लॉगो के शोरूम्स में आइए या फिर keyfurniture.co.uk पर जाएं।
13: मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। अभी कॉल करें 0208150205 और विजिट meraboiler.com। एजेंसी सप्लाई।
14: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
15: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन 4 मजेदार फ्लेवर्स।
14: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ।
16: कुछ आवाजें सिर्फ गाती नहीं, जिंदगी भर याद रह जाती हैं, और अब वही खूबसूरत आवाज पहली बार आ रही है यूके। इंडियन आइडल फेम सुगंधा डाटे लाइव इन कॉन्सर्ट संडे द 6th ऑफ सितंबर एट द मेशा लोहाना सेंटर लंदन। अपनी सीट्स अभी बुक कीजिए। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल अश्विन ऑन 07956278228। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क।
17: 7 स्टेशंस, 1 पॉडकास्ट, 1 मोबाइल ऐप। Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0207 132 1458 or sales@leicamedia.co.uk.

स्वागत है आपका। ये लाइका रेडियो नेटवर्क पर लाइका गोल्ड रेडियो है और लाइका रेडियो मिडलैंड भाई, आप जहां जहां तक हमारी आवाज सुन रहे हैं, कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। और याद दिला दूं, माय नेम इज रवि शर्मा, दोपहर बाद 1 बजे तक मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं। वक्त हो गया है चिंतन का, थॉट फॉर द डे, आज का विचार।

आज के चिंतन में शामिल करने के लिए भाई हमें पंडित विश्व प्रकाश ने आलेख भेजा है और वो याद दिला रहे हैं एक महान शहनाई वादक की। नाम तो सुना होगा आपने, आज उनका जन्मदिन है। भारतीय संगीत के लिए ये भावुक करने देने वाला दिन है क्योंकि इसी दिन महान शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खां का निधन हुआ था, इंतकाल हुआ था। लेकिन साहब कुछ लोग ऐसे हैं जो दुनिया से जाकर भी दिलों में बने रहते हैं। बिस्मिल्ला खां साहब भी उन्हीं में से एक थे। शहनाई को पहले शादी ब्याह का ही साज समझा जाता था या धार्मिक समारोह में ये जो है स्वर इसका सुनाई पड़ता था, लेकिन बिस्मिल्ला खां साहब ने शास्त्रीय संगीत के बड़े से बड़े मंच तक शहनाई को पहुंचाया। और जब 15 अगस्त 1947 में भारत को आज़ादी मिली तब राजधानी दिल्ली के लाल किले से खां साहब की शहनाई की स्वर लहरियां भी इतिहास का हिस्सा बनी। बिस्मिल्ला खान शहनाई का जैसे पर्यायवाची शब्द है। 2001 में भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया। वे केवल कलाकार ही नहीं बल्कि भारतीय कल्चर के सांस्कृतिक एकता के प्रतीक थे। कैसे? वो कहते थे कि संगीत तो जोड़ने का काम करता है। संगीतकार कभी लड़ते झगड़ते नहीं हैं, वो एक दूसरे के प्रति समर्पित रहते हैं, प्रेम करते हैं श्रोताओं से, संगीत प्रेमियों से। उन्होंने 1901 में लाहौर में गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना की, गंधर्व कॉलेज, और भारतीय क्लासिकल म्यूजिक को आम लोगों तक पहुंचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो भाई आज का दिन कहते हैं कि महान संगीतकार को याद करने का दिन है, और याद करने की वो बात भी है उनके जीवन से जुड़ी हुई कि भाई वो मंदिर के चबूतरे पर बैठ करके शहनाई बजाते थे। वाराणसी में लोग जमा हो जाते थे जब वो नियम से बजाते थे, फिर एक बार माहौल बिगड़ने लगा तो कुछ लोग उनके पास आए कि खां साहब आप मंदिर के चबूतरे पर शहनाई नहीं बजाएंगे। उन्होंने कहा रोक के दिखाओ, मैं तो बचपन से बजा रहा हूं और तुम रोक के दिखाओ यही बजाऊंगा। आखिरकार भाई वो लड़के चले गए, कुछ भटके हुए नौजवान थे, तो उन्होंने कहा कि ये शहनाई, ये संगीत किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, किसी धर्म संप्रदाय के लिए नहीं है, मैं तो अपने उस अल्लाह के लिए, उसे खुश करने के लिए, और उसमें आप सबको भी प्रसाद मिलता है, जात वर्ण आश्रम मत पंथ मजहब। बच्चों ये बांटने का काम तो हम लोगों ने किया है, ईश्वर ने हम सबको जो बनाया है, जैसा बनाया है उसमें एक दूसरे से रिश्ता जुड़ा हुआ है। हमारा खूनदान एक है, काट के देखो सबका खून लाल रंग का निकलेगा, क्योंकि हमारा खूनदान और हमारा खानदान एक है। शहनाई का ये स्वर एकता का प्रतीक बन गया बिस्मिल्ला खां साहब के कारण। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया।

0: बिस्मिल्लाह खान साहब जिनकी आज पुण्यतिथि है, बरसी है भाई, काशी जी में मंदिर के चबूतरे पर बैठ करके शहनाई बजाते थे। और क्या शहनाई बजाए, पूरे विश्व के स्तर पर भाई वो मशहूर हुए शहनाई के कारण। आज उन्हें श्रद्धा से याद करते हैं, पर श्रद्धा से याद करते हैं उनका ये व्यवहार भी कि बजाऊंगा मंदिर के चबूतरे पर ही बैठकर, अपने रब के लिए बजाता हूं, इसलिए उसके उसकी दहलीज पर बैठ के बजाता हूं। हिंदू और मुसलमान का भेद मिटाने के लिए भाई उन दिनों काफी गर्म माहौल था, और ऐसे में अगर इसी के कारण फिर जो है भारत सरकार ने सम्मानित किया। फिर याद दिला दें आपको, आज उनका भाई स्मृति दिवस है। भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया, जो कि भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड है, भारत रत्न। 2001 में भारत रत्न दिया गया उन्हें। वो भारतीय कल्चर की प्रतीक माने जाते थे। और साहब 1901 में उन्होंने लाहौर में गंधर्व कॉलेज की स्थापना की और भारतीय क्लासिकल म्यूजिक को आम लोगों तक पहुंचाने में बहुत बड़ा रोल अदा किया। उन्हें श्रद्धा से याद करते हुए आज का चिंतन समेटते हैं और भाई धन्यवाद देते हैं पंडित विश्व प्रकाश जी को, जिन्होंने आज की चिंतन के लिए आलेख भिजवाया। आज का चिंतन, आज का विचार अब समाप्त होता है।
1: चिंतन चिंतन,
0: आइए लौटते हैं अब अपने कार्यक्रम के मूल रंग की ओर। पहले सुनवाते हैं आपको पाउंड का रेट, कुछ बदलाव आया कि सुबह से रेट चल रहा है, अच्छा चल रहा है। सुनिए, भारत पैसे भिजवाने चाहते हैं, भिजवाना चाहते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके का ये संदेश आपके नाम हो सकता है।
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Today's rate is For £1, SBI UK दे रहे हैं 130.25 रुपीस, 130 रुपए और 25 पैसे। You can transfer via branch, online or by using the Yono SBI UK mobile app. Sharte lagu.
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
3: Like our gold. आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस। उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।

0: कैसे।
1: सेट को माइक्रोवेव फूड कंटेनर,
2: हर मौके पर काम ये आए, घर घर खुशियां लाए।
1: जहां जिंदगी वहां सेट को
3: माइक्रोवेव। वन परफॉर्मर,
4: काउंटलेस पर्सनालिटीज,
3: अ होल यूनिवर्स ऑफ एंटरटेनमेंट।
4: सुनील ग्रोवर लाइव यूके टूर 2026,
3: 29th October, Ovo Arena, Wembley, London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester.
4: From Gutti to Dr. Mashur Gulati, from Rinku Bhabi to brand new surprises.
3: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
4: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
3: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network. Now, banking with ICICI Bank UK works beautifully together.
4: Your iPhone becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
3: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
4: And with global account linkage, view your UK current account and India savings account balances all in one place.
3: Plus, send money to India seamlessly with the Money to India app.
4: ICICI Bank UK, smarter banking right at your fingertips.
3: Apple Pay is available on compatible devices. Terms and conditions apply.
4: ICICI Bank UK PLC is authorized by the PRA and regulated by the FCA and PRA.
5: हेलो रे हेलो, आज जन्माष्टमी कान्हा ना रंगमा लंदन पड़ रंगा से स्टार्टअप मीडिया प्रेजेंट्स जन्माष्टमी भजन जैमिंग विद नंदलाल छांगा। भक्ति नासुर, गरबानी मस्ती अने कृष्णा सेलिब्रेशन, ऑल इन वन अनफॉरगेटेबल इवनिंग। 5th September, Wembley. 6th September, Crawley. Tickets only £25. Book now. Call 07940924667. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
6: What food mein dinner plans? Thoda classy, thoda desi.
7: To aaiye Godfather & Co. Vivek House Bar & Kitchen.
6: From crispy starters, butter chicken, paneer tikka masala se biryani tak, fresh bread and refreshing drinks. Har bite mein lajawab flavors aur vibe bilkul premium.
7: Friends, family, yes. स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस वटफोर्ड, कॉल 01923227274। बुक योर टेबल टुडे।
8: इमेजिन टर्निंग योर नेक्स्ट केक बॉक्स ऑर्डर इनटू अ मैजिकल फैमिली एडवेंचर। दिस अगस्त एवरी ऑनलाइन केक बॉक्स ऑर्डर इज ऑटोमेटिकली एंटर्ड इनटू आवर प्राइज ड्रॉ टू विन अ फैमिली ट्रिप फॉर 4 पीपल टू डिज्नीलैंड पेरिस। सो सेलिब्रेट बर्थडेज, स्पेशल मोमेंट्स एंड समर मेमोरीज विद केक बॉक्स, एंड यू कुड बी सेलिब्रेटिंग इन Disneyland 2. Order online this August at cakebox.com. Cakebox. Celebrate today and make memories forever. T&Cs apply.
9: भारतवंशियों का सबसे बड़ा राष्ट्रीय त्योहार स्वतंत्रता दिवस समारोह इंडियन डायस्पोरा एंड हाई कमीशन ऑफ इंडिया बड़ी धूमधाम के साथ मना रहे हैं। 22 अगस्त शनिवार को नवनाइट सेंटर हेज में आइए और सबको लाइए फ्री एंट्री, पार्किंग, एंटरटेनमेंट, फूड, भारतीय व्यंजन, ध्वजारोहण और जनगणमन गायन 22 अगस्त शनिवार को सुबह 10 बजे से।

0: और आज के प्रोग्राम में एक कंपटीशन होगा।
1: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
0: आज के कार्यक्रम में भाई अभी स्क्रीन पर मैसेज आया कि आज के प्रोग्राम में रवि शर्मा एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज करेगा और 2 टिकट्स इनाम में देगा। कौन से शो के, किस कलाकार के, नोट कर लीजिए। लाइका रेडियो नेटवर्क एंड अनुज चोपड़ा फाउंडेशन एक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, चैरिटी प्रोग्राम है और ये कार्यक्रम है अनूप जलोटा साहब का।

An evening filled with ghazals and elegance featuring legendary Anoop Jalota. Hosted by Anisa Nasir. 30 तारीख को भाई 30 अगस्त को क्वींस थिएटर रॉमफोर्ड में है. शाम 6 बजे शो है, 5 बजे डोर खुल जाएंगे.

मुझे सब कंपटीशन के बारे में बता दें आपको, ये अनूप जलोटा जी की लहराती आवाज, बलखाती आवाज, अंगड़ाइयां लेती आवाज, चांद और चांदनी का एहसास कराती आवाज गूंजेगी 30 तारीख को क्वींस थिएटर में जो रोमफड़ में है। और भाई अगर आप टिकट खरीदना चाहें तो जस्ट विजिट queens-theater.co.uk, क्वींस फिर हाइफन theater.co.uk। और जीतना चाहते हैं तो अभी बताता हूँ कंपटीशन में कैसे पार्टिसिपेट करना है।

0: भाई ये गजल सुनवाते हुए आपको बता दूं कि बहुत जल्दी हमारा यूके का फर्स्ट गजल रेडियो स्टेशन जो है वो खुलने जा रहा है।
1: एक भूली हुई सी कहानी,
0: आप जुड़ेंगे, गजलों का भंडार होगा वहाँ पर।
1: फिर मुझे याद
0: आने लगी है, चांद अगड़ाइयाँ ले रहा है। कंपटीशन के भाई बारे में बता दूं कि कंपटीशन में जो विनर होगा उसको टिकट जो है बॉक्स ऑफिस से वहां से जाके कलेक्ट करनी होगी। वी आर गिविंग टू टिकट्स, सिंपली सेंड द वर्ड गजल्स फॉर यू टू बी ए इन द कंपटीशन, टू बी इन टू विन, वाह टू बी इन टू विन। हाँ तो हमारा फोन नंबर तो याद है ना, जहां पर आपने टेक्स्ट भेजना है, व्हाट्सएप का नंबर। संडे 30 तारीख को क्वींस थिएटर रॉमफोर्ड में हो रहा है शो, शाम 6 बजे शुरू होगा लेकिन 5 बजे से एंट्री शुरू हो जाएगी। स्वयं अनूप जलोटा साहब अपनी आवाज की स्वर लहरियां जो बिखेरेंगे, और ब्यूटीफुल थिएटर है, ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर, और फिर आप जानते हैं कौन कंपेयर कर रही है शो को, गजलों की डायरी नहीं शायरी की डायरी। और ये स्वर लहरियां, तो भाई गजल लिख के भेजिएगा 2074242323 और गजल की तो कैपिटल में लिख दीजिएगा, फिर अपना नाम अपना फोन नंबर लिखना मत भूलिएगा।

The winner will be announced in the next hour and winner will collect his tickets, two tickets from the theaters or box office. क्या बात, इंतजार है लोगों को. अनूप जलोटा, अनूप जलोटा आ रहे हैं अनुज चोपड़ा फाउंडेशन के लिए. भाई ये चैरिटी कार्यक्रम उनकी स्मृति में हो रहा है, तो मुझे यकीन है आप भेजना शुरू करेंगे. ओ आ रही है भाई एंट्रीज 07424.

कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले वही श्रोता ध्यान से सुन ले, आपको अपना नाम और अपना फोन नंबर भी साथ लिखना है। गजल तो लिखना ही है। ऑल द बेस्ट।

0: good track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
3: Like a extra podcast update.
4: Aur bhai, लायका एक्स्ट्रा पर हमारा नया एपिसोड अब चल रहा है, खूब लोकप्रिय हो रहा है. द टाइटल ऑफ द न्यू एपिसोड इज गोल्ड रियली द बेस्ट इन्वेस्टमेंट? क्या सोने में पैसा लगाना सचमुच बहुत फायदेमंद है, बेस्ट इन्वेस्टमेंट है ये? होस्टेड बाय रवि शर्मा. ये कौन है शर्मा जी? कोई अच्छे नेक दिल इंसान लगते हैं भाई, सुनने में तो अच्छे लगते हैं. पर रियली विश्वास कीजिए, सोने में पैसा लगाना सचमुच फायदेमंद है, बहुत फायदेमंद है. और कहते नुकसान कोई नहीं है भाई. बात यह है कि और कहीं भी आप इन्वेस्ट करते हैं उनमें कीमत उसकी बढ़ती है, वो कितना फायदेमंद साबित होता है, लेकिन सोने में तो बढ़ती है. आज सचमुच जिस रेट पर बिक रहा है, मैं हैरान हूँ कि थोड़ा सा नीचे आया था फिर उससे ज़्यादा कई गुना ज़्यादा ऊपर चला गया. एनीवे मैन, लेट मी रिमाइंड यू, यू मस्ट वॉच दिस. गोल्ड प्राइसेस आर सोरिंग, बट हु इज रियली कंट्रोलिंग द गेम विल बी एक्सप्लेन्ड बाय द मीनार ज्वेलर्स डायरेक्टर. बहुत जाने माने प्रतिष्ठित जो है स्वर्णकार हैं हमारे प्रवीण भाई पटनी जी. और प्रवीण भाई पटनी ने इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है कि सोना क्यों एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट है. तो देखिएगा और भाई सीखिएगा, समझिएगा उनसे. लाइक का एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स.
3: लाइक एक्स्ट्रा इज हियर. गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर लंदन एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव.
2: ये है लाइका गोल्ड.
4: ट्रेवल हब वर्ल्ड .com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब वर्ल्ड .com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208782883 और विजिट ट्रेवल हब वर्ल्ड .com.
5: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
6: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
5: विजिट ट्रेवल हब वर्ल्ड .com.
7: Location, location, location. Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
8: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
7: Fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel, prime location,
7: high appreciation
8: in Dubai.
9: Creatives Team Events and Peace Nation UK proudly presents the Virasat Tour UK with the one and only Lakhwinder Wadali on Friday the 16th of October at Crystal Grand Slough. On Sunday the 18th of October at the ICC Birmingham, a memorable Sufi musical with Lakhwinder Wadali and his live band.
10: Book your tickets now on Eventbrite. For sponsorship inquiries, call 07949-250-376.
11: Are we there yet?
12: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
11: Relax, I've booked the Uber already.
12: How? My roaming isn't even working yet.
11: I switched to Simzy before we left London.
12: Simzy? Since when are you the tech expert?
11: Since I decided I want a stress-free holiday.
13: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simzy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simzy, holiday travel simplified.
14: T's and C's apply.
4: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है. शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए. गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है. जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी. आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉगो के शोरूम्स में आइए या फिर keyfurniture.co.uk पर जाएं.
6: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे। कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस। कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3444-24-hour line।
15: मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com। टीएनसी सप्लाई।
16: नोकझोंक, सीक्रेट्स, अनलिमिटेड लड़ाई और अनलिमिटेड बातें। दुनिया के सबसे अनोखे इस भाई बहन के रिश्ते

0: Spectacular live musical on Sunday the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
1: Ilford, अब असली इंडियन फ्लेवर्स का मजा लीजिए.
2: बीकानेर वाला परंपरा भी
3: फेमस छोले भटूरे, राज कचौरी, मिठाई और बहुत कुछ आपका इंतजार कर रहा है. मिलते हैं 513-519 क्रैनब्रुक रोड, गैंसिल, इल्फोर्ड, IG26HA. कॉल 07555-506015.
4: Like Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Like a Goon, London का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर. एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइक अ गोल्ड और ऑनलाइन सुनो likeagold.com पे.
5: लीजिए एक बार फिर याद दिला दें आपको कि भाई श्रावण मास चल रहा है और श्रावण मास में भगवान शिव की विशेष रूप से जो है आराधना की जाती है. गोरी की भी, गोरी पार्वती भगवान शिव की अर्धांगिनी.

0: currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: और नोट कीजिए साहब, स्विफ्टली की रेट्स आज एक पाउंड के बदले कितने पैसे दे रहे हैं वो? लेट्स फाइंड आउट. फॉर वन पाउंड इन इंडियन करेंसी दे आर गिविंग 130.74 रुपीज, पाकिस्तानी 379.4.

0: लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाजें थी इस गीत में शामिल। और इससे पहले जो गीत हमने सुनवाया था, तेरा बिटवा जवान हो गया, शरारती में गौतम गोविंदा फिल्म का गीत था वो।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK याद दिला रहे हैं, भाई पैसे अपनों को भिजवाना चाहते हैं तो दिस इज द राइट टाइम बिकॉज इट्स अ गुड रेट एट द मोमेंट। लेट मी टेल यू व्हाट रेट दे आर गिविंग फॉर वन पाउंड। एक पाउंड के बदले मैक्सिमम 130.25 रुपीज, 130 रुपए और 25 पैसे का रेट चल रहा है। यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच ऑनलाइन और वाई यूजिंग द योनो SBI मोबाइल ऐप जो है उनका, उसके थ्रू भी भेज सकते हैं। Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
2: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस। उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।

0: किसी की नजर,
1: जहाँ जिंदगी वहाँ सार्थक।
2: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena, Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
3: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
4: 0730099823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को। सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे। विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 0730099823। महाराजा टूर्स के साथ नेपाल और भूटान की आध्यात्मिक यात्रा पर चलिए, अपना सुकून ढूंढिए हिमालय की खूबसूरत वादियों, प्राचीन मोनेस्ट्रीज, रंग बिरंगी संस्कृति और यादगार अनुभवों का मजा लीजिए। सुकून, शांति और प्रकृति का अद्भुत संगम आपका इंतजार कर रहा है। आज ही महाराजा टूर्स के साथ अपनी नेपाल और भूटान यात्रा बुक कीजिए। विजिट maharajatours.co.uk और कॉल 07956154846।
5: Discover unique Grand Prix holidays with flights, race tickets and hand-picked stays. Combine iconic motorsport weekends with city breaks, beach escapes or even cruise experiences for the ultimate getaway. Prices start from just £799 per person. Visit skylordcruiseandholidays.com or call 0192 388 3100. Atoll Protect.

0: Mabster નું પાણીપુરી અને પાણીપુરી નો પાણી.
1: All Mabster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: Brands that use radio are 49% more likely to get noticed. Amplify your advertising at radiocentre.org. Assuming you want to get noticed.
3: Tasty swag and sweet charm. Every spoon feels like a tropical warm. Make puri and amras or milkshake full. Taste itna pure, ho jaye happy soul.
4: Mango season has arrived. Here also with Jaimin's Mango Pulp. No added preservatives or colors. Only purest taste of mangoes.
3: Jaimin Foods Mango Pulp. Available now.
5: Like a Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagold.com.
6: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Like a Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
7: Aur bhano bhaiyo, Artist of the Week kaun hai is saptah? Kaun hai? वो है साहिर लुधियानवी. यस, और साहिर साहब के भाई एक से बढ़ के एक गीत हमारे पास हैं, और उनमें से कौन सा सुनवाएं आपको? अरे वो तो गीत ही गायब हो गया भाई. ये शहनाइयां दे रही हैं दुहाई, कोई चीज़ अपनी हुई है पराई, किसी से मिलन है किसी से जुदाई. ये शब्द किसने लिखे, कौन सी फिल्म के लिए लिखे, और उसमें भाई इस समय प्रोग्राम में शामिल करने का प्रयोजन क्या है? तो सुनिए ये गीत, पहले एंजॉय कीजिए, फिर हम बताते हैं. आर्टिस्ट ऑफ द वीक की कलम से जन्मा है ये गीत, और ये गीत है, पहले तो थोड़ा सा ये सुन लीजिए भाई. ये बता दूं मैं आपको कि हाँ, ये आ गया गीत, थोड़ा और ऊपर. हाँ, एक तो बड़ी अच्छी भाषा है, और वजन और गीत और फिर धुन भी ऐसी है, सुनिए, भावुक कर देगी आपको.

0: बड़े सॉन्ग और भाई देखिए कितना दर्द और कितनी वो इमोशंस इस गीत में भरे हुए हैं। पर जिन्होंने लिखा ये गीत भाई उन्होंने शादी की नहीं, बेटी को विदाई देते वो तो बहुत दूर की बात है। और साहब वैसे साहिर साहब के नाम के साथ जो नाम जुड़े उनमें अमृता प्रीतम का एक नाम रहा, बहुत अच्छे मित्र थे वो, लेकिन अमृता और इनकी शादी नहीं हुई, अमृता ने प्रीतम के साथ शादी करके अपना नाम अमृता प्रीतम बना लिया। लेकिन उसके बाद भी साहित्यिक दृष्टि से भाई दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे सहयोगी रहे, मित्र रहे। और फिर बाद में कुछ समय के लिए साहिर लुधियानवी का नाम सुधा मल्होत्रा के साथ भी जुड़ा, पर वहाँ भी इनकी शादी नहीं हुई। तो भाई ये शायर लोग तो शायरी से ही शादी कर लेते हैं, यानी अपनी डायरी से ही शादी कर लेते हैं। ही वॉज़ द आर्टिस्ट ऑफ द वीक दिस वीक। और भाई उनके बहुत सारे गीत आपने सुने, अभी और भी सुनेंगे संडे तक, लेकिन वो भाई साहिर साहब दुनिया में नहीं है, लेकिन गीत उनके हैं, रहेंगे हमेशा।
1: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

ये आवाज पहचानी आपने? अरे साहब यही आवाज तो गूंजने जा रही है 30 तारीख को, भूलिएगा नहीं। अगर आपने अपनी टिकटों का इंतजाम कर लिया तो बहुत अच्छी बात। ये अनूप जलोटा की आवाज थी गीत के शुरू में, गीत आगे लता जी की आवाज में है। अनूप जलोटा मल्टी टैलेंटेड भाई, वो म्यूजिशियन भी हैं, गायक भी हैं और कभी लेखक का भी जो है दायित्व निभा लेते हैं। अनूप जलोटा होस्टेड बाय अनिसा नासिर, अनुज चोपड़ा फाउंडेशन के लिए 30 तारीख को प्रोग्राम करने जा रहे हैं। गजलों का प्रोग्राम है, लेकिन हो नहीं सकता कि वो एक आध भजन भी ना गुनगुनाएं। वहाँ पर फरमाइश आएंगी तो वो ज़रूर पूरी करेंगे। फिल्मों में भी उन्होंने गाए हैं बहुत सारे गीत, लेकिन मुझे यकीन है कि चांद अंगड़ाइयाँ ले रहा है वो तो ज़रूर अंगड़ाई लेगा गीत थिएटर में। नोट कर लीजिए, कॉम्पिटिशन हमारा चल रहा है, रिजल्ट आने वाला है। 2 टिकट्स तो हम फ्री में दे रहे हैं विनर को, जिन्होंने गजल लिख करके अपना नाम और फोन नंबर भेजा है। उनमें से कोई एक विनर अभी अनाउंस किया जाएगा, लेकिन बाकी आप टिकटें खरीद सकते हैं। यू कैन विजिट www.queens-theatre.co.uk। क्वींस थिएटर रोमफोर्ड में है, रोमफोर्ड में कि हॉर्न चर्च में, दोनों लिखिए भाई। RM111QT ये है पोस्ट कोड। अपने रेडियो के नजदीक आ जाइए, हमने बहुत जल्द अभी रिजल्ट अनाउंस करना है, आने वाला है।

0: लता मंगेशकर की आवाज आराम शोर लक्ष्मी प्यारे की बनाई धुन होगी। इसके गीत के शुरू में भाई अनूप जलोटा जी की आवाज थी और अनूप जलोटा जी के शो के विनर का नाम हम अनाउंस करने जा रहे हैं। एक बार फिर आपको याद दिला दूं, अगर आप टिकट खरीदना चाहें तो बॉक्स ऑफिस का फोन नंबर दे देता हूं, 01708443333, 01708443333 ये बॉक्स ऑफिस का नंबर है। और भाई अगर आप विजिट करना चाहें उनके वेबसाइट पर तो www.queens-theater.co.uk। और भाई जीतना चाहते हैं तो आपने जोर लगा लिया, आपने बहुत सारी एंट्रीज भेजी हैं और उनमें से जो विनर हैं अच्छा आप हैं विनर, और साहब आप हैं विनर जिनके फ़ोन के आखिर में क्या आता है, फोन के आखिर में है आपके नंबर के, भाई कहाँ है, 507 आपके फोन के आखिर में आता है और आपका नाम है वीरेंद्र चौधरी। भैया आप दो टिकट्स जीते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि टिकट्स आपको बॉक्स ऑफिस पर मिलेंगे। आप समय से पहुंच जाइएगा, 5 बजे डोर ओपन्स एंड द शो स्टार्ट्स एट 6 o'clock, और एड्रेस मैंने बता दिया है, क्वींस थिएटर, और बहुत मशहूर जगह है, बहुत ब्यूटीफुल थिएटर है, इट इज़ ऑन क्वींस थिएटर, बिलेट लेन, हॉर्न चर्च, RM11QT। तो ये पोस्ट कोड है, समय से पहुंच करके अपने टिकट क्लेम कीजिए, आपका नाम आपका फ़ोन नंबर वहां पर पहले से होगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और बहनों भाइयों कंपटीशन ख़त्म, दो टिकट हजम, लेकिन बहुत सारे टिकट्स जो हैं अभी हैं आपको मिल सकते हैं। ये 30 तारीख को है कार्यक्रम, संडे है उस दिन 30 अगस्त 2026, तो सी यू देयर, और विनर को कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, दो टिकट्स आपके वहां पर बॉक्स ऑफिस में मिलेंगे। ये गीत कौन सुनवा रहे थे? Feel Good Track
1: brought to you by Dairy Valley. Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: और लीजिए साहब, अगला गीत सुनवाने से पहले एक सूचना हमारे पास आई है। क्या सूचना है? सूचना ये है कि आप सभी सीनियर सिटीजन्स को, भाई हमारा कार्यक्रम तो सुनते ही सीनियर सिटीजन है ज़्यादा, आपको बताऊं, क्योंकि पुराने गीतों से लगाव उन्हीं का होता है, और अक्सर कोई नौजवान बच्चे मिल भी जाएं, एक ने कहा मुझे आपकी फ़ोटो लेनी है, मैंने कहा भाई बड़ा यंग फ़ैन है मेरा, तो मैंने कहा भाई ले लो, कहता है कि आप फोटो पाड़ू से हमारी बाप माटे, हमारी बाप बहुत सुनती हैं आपको, अब हमारे फादर, हमारे दादाजी, नाना जी, भाई वो सब मेरे हिस्से में आते हैं, तो थैंक यू वेरी मच, सुनते हैं, वरना तो आजकल कौन किसकी सुनता है। तो आज भाई उन सीनियर्स के नाम का दिन है, सभी वरिष्ठ नागरिक सीनियर सिटीजन्स को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस है आज, यानी वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे। तो सारे बुजुर्गों को, हालांकि उम्र जस्ट ए नंबर, आप तो दिल से जवान हैं बिल्कुल मेरी तरह आप सबके नाम एक गीत लगाने को जी चाहता है, मंजूर करेंगे?
2: This is like a gold.
3: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.
0: तो बुजुर्गों के लिए भाई लिखा है कि आपकी इम्पोर्टेंस, आपका बड़प्पन, आपका मार्गदर्शन बहुत बहुत कीमती है। अपने आप को वो क्या कहते हैं कि गया गुजरा ना समझे, खर्च हो गया ना समझे, अगर आप नहीं होंगे तो किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा, जहां लड़की की इज्जत लूटना एक खेल बन जाए, वहां ए कबूतर तेरे पर चिट्ठी कौन बांधेगा, पर यानी पंख, वहां पर ए कबूतर तेरे चिट्ठी कौन बांधेगा, ये बाजारे सियासत है यहां खुददारियां कैसी, सभी के हाथ में कांसा है मुट्ठी कौन बांधेगा, और मुकद्दर देखिए वो बांझ भी है और बूढ़ी भी, पर हमेशा सोचती रहती है कि गठरी कौन बांधेगा। और तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े जरूरी हैं। तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े जरूरी हैं, अगर हम ही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा। अगर हम ही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा।
4: 60 साल के और तुम होगी 55 की।
0: बुजुर्गों को सलाम।
4: बोलो प्रीत निभाओगी ना तब भी अपने बचपन की।
5: क्या क्या क्या

श्रीनी शाह याद दिला रही है भाई, कहते हैं कि हम मंथली मीट मतलब हर महीने मिलते हैं, कौन एल्डरली पीपल, भाई सभी बुजुर्गों को सैल्यूट करता हूं मैं, क्योंकि वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाते हैं, राह दिखाते हैं, अनुभव जताते हैं।

0: बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। टीएनसी सप्लाई।
1: हॉन्स्लो, अब इंडिया का फेवरेट स्वाद बिल्कुल आपके पास।
2: बीकानेर वाला परंपरा भी।
3: बीकानेर वाला में एंजॉय कीजिए फेमस छोले भटूरे, राज कचौरी, मिठाई और बहुत कुछ। आज ही आइए 101-105 हाई स्ट्रीट हॉन्स्लो, TW3 1QT। कॉल करें 07487-687-885।

0: सब क्लॉस अब है स्टॉप क्लॉस।
1: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. This is the Leica Radio Network. You heard. The Leica Group, consisting of Leica Radio and Leica Gold, is once again the number one Asian commercial group in Greater London. Advertise today across our four stations on 0207 132 1458 or sales@leicamedia.co.uk.
2: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
3: कौचू बंद कर रेडियो।
4: नहीं करू कीधु ने।
3: अरे कौचू बंद कर, मैं टीवी जोऊ छे।
4: तमारे जे जोऊ होते जुओ, समझा ने। जहाँ सुधी रवि शर्मा ने न सांभळू ने त्यां सुधी रेडियो बंद नहीं करू, नहीं करू, नहीं करू।
3: एटले
4: शु? वार छोड़ीस, घर छोड़ीस, पर रवि शर्मा ने नहीं छोड़ू। ना, एटले रेडियो मां रवि शर्मा ने सांभळवानू नहीं छोड़ू।

0: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Goodness in every bite. Try it today. Available in your nearest convenience store.
1: Manoranjan with Ravi Sharma. Like a
2: gold. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
3: And let me tell you the rates by एक पाउंड के बदले दे आर गिविंग इन इंडियन करेंसी 130.64 रुपीस, पाकिस्तानी करेंसी में 378.76 रुपीस, श्रीलंकन रुपए 449.46, बांग्लादेशी टके 166.82 और अफगानी 90.01.
4: Leica Radio.
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. Leica. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
3: Well, the gold is trading at the rate of 108.32 pounds per gram.
2: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
5: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस. उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत.
6: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए.
7: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
6: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी.
7: गारंटेड.
6: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे. साउथ हॉल ट्रेवल.
7: फोन 02085748410.
6: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410. एट ऑल प्रोटेक्टेड.
8: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
9: Celebrate Krishna Janamashtami in a truly vibrant way. Join us on Sunday the 30th of August from 2 p.m. to 8 p.m. at Navnath Centre, Printing House Lane, Hayes, UB3 1AR. Live music, Ramayan play, Ras Leela, delicious food, fun fair, shopping and free entry with free parking. Book a stall for your business before the 15th of August by calling Ramesh Shah on 07742 045 154. Exclusive radio partner Leica Radio Network. This ad is sponsored by Jamin Foods.
10: Location, location, location. Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
11: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
10: Fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
11: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
10: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
11: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danio, prime location,
10: high appreciation
11: in Dubai.
12: सप्टेम्बर महीना में हास्य नो डबल धमाको फरी आवी रह्यो छे.
13: तमे बता पुरुष हो तो लगने लगने कुवारा हो छो.
14: ए तमे स्त्रीओ अमने छे ने पुरुषो नाम खोटा ओबोवानो बंद करो.
12: कॉमेडी किंग निमेश शाह अने क्वीन ऑफ कॉमेडी मल्लिका शाह लईने आवी रह्या छे सुपर हिट गुजराती नाटक हालो पटेल भाई नी जान मा. हवे राइसली पॉटर्स बार इलफर्ड साउथ लंडन अने ल्यूटन मा. टिकट्स अने वधु माहिती माटे आज ज कॉल करो मंजू ने ऑन 07931534270. नाटक नु नाम याद राखजो.
15: Have you noticed the way fans shout at football matches?
16: Oh, wake up!
15: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
17: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
3: और लीजिए साहब, चलने का समय हो गया है। बता दूं आपको कि बाली ब्रह्म भट्ट आपके मेजबान होंगे 1 बजे की खबरों के बाद। रवि शर्मा इस साइनिंग ऑफ याद दिलाते हुए कि भाई जन्माष्टमी का पर्व आ रहा है, उससे पहले राखी का त्यौहार आ रहा है। राखी है 27 तारीख को और जन्माष्टमी 4 और 5 सितंबर को यहाँ लोग मना रहे हैं, तो आधी रात तक आयोजन होते हैं। हम सूचनाएं आप तक पहुँचाते रहेंगे। और अब भाई दोस्तों, शक दोस्ती का दुश्मन है। शक जब होता है ना तो ना परिवार चलता है, ना कारोबार चलता है। पार्टनर्स एक दूसरे पर भरोसा ना करें, पति पत्नी एक दूसरे पर भरोसा ना करें, बच्चे अपने परिवार पर भरोसा ना करें। दोस्तों शक दोस्ती का दुश्मन है, अपने दिल में इसे घर बनाने ना दो। और कल तड़पना पड़े याद में जिनकी, रोक लो आज तुम उनको जाने ना दो। अनुमति दीजिए, बाय बाय, हैव अ सुपर्ब वीकेंड।

आज सुबह अरविंद भाई की मोटर चली गैराज पे एमओटी के लिए और ये गाना पैदा हुआ। एमओटी फेल हो गया, इन्होंने मुकेश का गाना शुरू कर दिया, लेकिन हम उनको तसल्ली देंगे, एमओटी फेल हो गई है, चलो देखते हैं क्या हुआ।

0: अरे आज तो हंगामा हो गया। सुबह सुबह अरविंद भाई की मोटर चली पंप पंप पंप, खुशी खुशी गैरेज पहुंच गए और इन्होंने कुछ खाली नंबर प्लेट प्रॉपर एडजस्टमेंट नहीं थी, इसीलिए फेल कर दिया। इट्स टेरिबल ऑनेस्टली, सिर्फ इंजन देख के पास कर दो भैया, ये सब क्या नंबर प्लेट का मामला। आप छोटी छोटी बातों पे हमारे अरविंद भाई को दुखी कर रहे हो। तो हमने अरविंद भाई से पूछा कि क्या मूड क्या है, क्या फीलिंग है। बोले कि ऐसा ही 100 पाउंड तो खर्चा तो हो ही गया है, अभी नंबर प्लेट दूसरी करा के कल दूसरी वापस ले जाएंगे। इट्स जस्ट नथिंग बट एक वीकेंड की बुरी शुरुआत हो गई, लेकिन मेरा इरादा है हम उनका मूड बनाएंगे। ओके, वी शैल डू दैट। इट्स अ फ्राइडे एंड यू शैल हैव अ वंडरफुल वीकेंड अरविंद भाई, हताश मत होइएगा। ओके, वी शैल कैरी ऑन द जर्नी। एंड एक तरफ ये सैड न्यूज है, दूसरी तरफ बड़ा हैप्पी न्यूज है, बिकॉज एजेस ऑफ चैशम, हमारे नंबर वन लिसनर ऑन द रेडियो, इनकी 58th बर्थडे है। दैट्स राइट, 58। तो ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ दिस आवर वी गोना सेलिब्रेट हिज बर्थडे बाय प्लेइंग अ वंडरफुल सॉन्ग। ओके, मैं हूं बाली ब्रह्मभट ऑन लाइक अ गोल्ड विद गोल्ड आफ्टरनून्स, अवेलेबल ऑन 1035 मीडियम वेव, DAB, Alexa, Google Home एंड LaikaGold.com, ऑल्सो अवेलेबल ऑन रेडियो प्लेयर ऐप। एंड वॉट डे इज इट, 409th डे ऑफ लाइका रेडियो मिडलैंड्स एंड बर्मिंगम वालो हमारे। ओके, एंजॉय योरसेल्व्स। 4 बजे सैंडी शाह आएंगे और उसके लाइका रेडियो मिडलैंड्स पे ऑफ कोर्स अनिका इन प्लेस ऑफ राज पतंजी। एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस फर्दर। सेकंड आवर में ट्रिब्यूट है, जुड़े रहिएगा। ट्रिब्यूट ऑफ अ ग्रेट producer, director, actor, whatever.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can get you up to 130.25. Yes, 130.25 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gold Afternoons. Proudly sponsored by Jaimin Foods, the authentic taste of India. Dal bhat, pav bhaji, biryani. Bas pet sambhar jo, kyunki cravings badhne wali hai.
3: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस। उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।
4: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
5: No more worries for me.
6: Southall Travel, auto protected.
7: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे। कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस। कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3444-24-hour line.
8: हेलो रे हेलो, आज जन्माष्टमी कान्हाना रंगमा लंदन पड़ रंगा से। स्टार्ट मीडिया प्रेजेंट्स जन्माष्टमी भजन जैमिंग विद नंदलाल छांगा। भक्ति नासुर, गरबानी मस्ती अने कृष्णा सेलिब्रेशन ऑल इन वन अनफॉरगेटेबल इवनिंग। 5th September, Wembley. 6th September, Crawley. Tickets only £25. Book now. Call 0794092-4667. Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
9: after a sold-out show at the Royal Albert Hall. Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena, Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
10: Location, location, location. Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
11: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
10: Fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
11: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
10: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
11: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel, prime location,
10: high appreciation
11: in Dubai.
12: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 019-238-83100. Atoll protected.
13: Khakra Crunch, Bhakri Munch, Chikki Sweet, Papad Beet, Pickles Heat. Ye hai Jaimin Foods ka vibe check.
14: Add desi tadka to your routine with Jaimin Food ke variety of snacks. Khakra, namkeen, papad, pickles, chikki, pot meals and much more.
13: Jaimin Foods Desi Cravings. Available at nearest ethnic grocery stores.
15: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए minarjewelers.com. कॉल 0208-767-7627.
16: लाइका गोल्ड, लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन, अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर. एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइका गोल्ड और ऑनलाइन सुनो LikeAGold.com पे. Feel good track brought to you by Dairy Valley.
17: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit DairyValley.net.

0: ऐसी मुसीबत कहते हो छोटे भैया?
1: ये तुझे कहाँ से मिली?
0: आज मैंने तुम्हें माफ कर दिया। रक्षाबंधन के दिन भाई बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। मैंने आज तुम्हारी रक्षा की, ये कभी न भूलना।

0: दस्तार गिर गया हाथ से।
1: गिर गया या जानबूझ के गिरा दिया? झूठ क्यों बोलती हो भाभी?
2: मीना, भाभी को झूठा कह रही हो? बेशरम, शेखर।
3: मेरे पास वक्त नहीं फजूल बातों के लिए, मैं जा रहा हूँ।
0: नहीं भैया, ये तो बहन की प्रार्थना है। बहन हो और भाई राखी न बंधवाए तो बड़ा अपशगुन होता है भैया।
2: होता है तो होने दो।

0: Track, brought to you by Dairy Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: आप हताश मत हो, हम आपको चीरअप कर देंगे अरविंद भाई.
3: Like a gold.
0: Wake up to Kajal on breakfast at 6 a.m. and drive back with Sandy Shah at 4 p.m. Like a gold.
2: आपके लिए हेलन आ गई आपको चीरअप करने के लिए. बीच पे डांस कर रही है और ये कह रही है, हेलन टू अरविंद भाई.

0: सो देयर यू गो अरविंद भाई, हताश मत होना, ये एमओटी वापस हो जाएगा और गम छोड़ के मनाओ रंग रेली. एंड ऑल द पीपल दैट हैव मैसेज्ड मी, दे ऑल एग्री विद मी. नाजिया शकील एंड महेंद्र पटेल, भरत गंगाराम, अरुणा एंड भूपेंद्र पटेल, मिकी पाजी, अर्जुन जी, ऑफ कोर्स अर्जुन जी एंड किशोर पंड्या जी. यस, व्हाट अ लवली एंट्री टुडे. जैस्मीन जी, मनु जी, ए जैस, हैप्पी बर्थडे बड़ी. एंड भारती जी एंड रमा पटेल एंड गीता एंड हर्षद जोशी, क्या सरप्राइज एंट्री, माय गॉड. Pammy Singh ji, thank you very much. Arvind ji.
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Gem in Gold Afternoons with Bali Brambert. Bali Brambert. Gem in Foods, bilkul ghar jaisa swad aur ghar jaisi hi baat. Available at Asian stores near you.
3: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल TravelHub 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com.
4: TravelHub, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
3: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
4: विजिट TravelHubWorld.com.
5: Creative's Team Events and Peace Nation UK proudly presents the Virasat Tour UK with the one and only Lakhwinder Wadali. On Friday the 16th of October at Crystal Grand Slough. On Sunday the 18th of October at the ICC Birmingham. A memorable Sufi musical with Lakhwinder Wadali and his live band.
6: Book your tickets now on Eventbrite. For sponsorship inquiries, call 07949-250-376.
7: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.80% on non-withdrawable fixed deposits.
8: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
9: What food make dinner plans? थोड़ा क्लासी, थोड़ा देसी.
10: तो आइए Godfather and Co. Vivek House Bar and Kitchen.
9: From crispy starters, butter chicken, paneer tikka masala se biryani tak, fresh bread and refreshing drinks. Har bite mein lajawab flavors aur vibe bilkul premium.
10: Friends, family ya special night out, ise yaadgar banaiye. Visit Vivek House Watford. Call 01923-227274. Book your table today.

0: Mamster Pani Puri or Pani Puri Ka Pani.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। अभी कॉल करें 0208150205 और विजिट meraboiler.com। टीएनसी सप्लाई।
3: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
4: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
3: Get a Royal Chai vending machine free. Perfect for cafes, restaurants, offices, shops, petrol stations or community spaces.
4: Rich, authentic taste every single time.
3: Royal Chai, brewed for business.
4: Email now. info@royalchaivending.com. Limited offer. Terms and conditions apply.
2: sonatours.co.uk special offer Japan Cherry Blossom Tour in March and April 2027. Book before the end of August and get up to 400 off. Call Sona Tours now on 0208 951 0111.
5: Leica Radio Network, proud hospitality partner

0: आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है.
1: The sun is out and so are the summer hits on Lyca Gold.

का क्यों मर रस्ते में निकल गया है अपना तो हाय रे का क्यों मर रस्ते में कभी न बिगड़े किसी की मोटर रस्ते में है।

0: गए राहों में।
1: डेफिनेटली राही मिल गए राहों में, प्यार हो गया। अनदर डॉक्टर हु लुक्स आफ्टर आईसीयू एट रॉयल लंदन, अ गाय कॉल्ड बेन। सो एनाबेल एंड बेन, प्यार हो गया, प्यार हो गया। ऑल द बेस्ट इन लाइफ। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू नैटली। अरविंद भाई इज हैप्पी नाउ अंटिल टुमारो व्हेन ही गेट्स हिज एमओटी डन।
2: Gold Afternoons with Bali Brambert. Bali Brambert is proudly sponsored by Jaimin Foods, your trusted name for dal bhat, pav bhaji, biryani and so much more. Available now at your nearest Asian shops. Jaimin Foods, the authentic taste of India.
3: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस। उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।
4: Search is changing.
5: Customers aren't just using Google anymore.
4: They're asking AI.
5: And AI doesn't show 10 websites. It recommends one answer.
4: One business, one recommendation.
5: So, when someone asks AI, who's the best company for this?
4: Will your business be the answer?
5: Or the one

0: Book call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
1: High appreciation.
0: In Dubai.
2: Mukesh और लता मंगेशकर के एवरग्रीन गानों की यादों में एक खूबसूरत म्यूजिकल शाम. पंकज सोढ़ा प्रेजेंट्स हम तो तेरे आशिक.
3: हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुरा.
2: स्वीट मेमोरीज ऑफ मुकेश एंड लता विद संगीता मेलेकर और मुख्तार शाह लाइव बैंड के साथ. 29th अगस्त हेच एंड हाई स्कूल हैरो. 30th अगस्त वुडमेंस्टर्न स्कूल साउथ लंदन. Dinner from 5 p.m. Show starts at 7 p.m. For tickets and more information, call Deepa on 07947561947.
4: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन. लंदन वालों ध्यान से सुन लो के फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है. शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए. गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब हैं. जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी. आज ही हमारे हैरो पिकलवुड और स्लॉगो के शोरूम्स में आइए या फिर keyfurniture.co.uk पर जाएं.
5: Dad,
6: what's wrong, beta?
5: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to Daddy in India.
6: I will run down to the money exchange now.
5: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
6: Oi, bale bale. I'm going to tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
5: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
7: Southall, Desi Swad ka asli adda aa gaya hai.
8: परंपरा भी
9: बीकानेर वाला में मिलेंगे फेमस छोले भटूरे, टेस्टी स्नैक्स, मिठाई और फैमिली के साथ यादगार मोमेंट्स. आइए 60 किंग स्ट्रीट साउथ हॉल UB2 4DB. कॉल 07795181001.
10: 40 million people listen to commercial radio each week. That's 80 million ears, give or take. Amplify your advertising at radiocentre.org.
11: Across London, this is Bally Brambat on Like a Gold.

0: हम भी प्यार का जाम देंगे किसको? हैप्पी बर्थडे एजाज विद दिस सॉन्ग।
1: तेरे दम से है दुनिया।

शंकर जयकिशन का, शंकर जयकिशन का संगीत और हसरत जयपुरी की लिरिक्स, एंड वी आर विशिंग आवर वंडरफुल लिसनर ए जैज 24/7, 365 days a year and 366 days in a leap year. He's always with us. Congratulations to the whole family and happy birthday, Ajaz. 58, but you don't look it. A cheerful song from film Kohra, Hemant Kumar. हेमंत कुमार का संगीत और कैफी आजमी की लिरिक्स है. एंड नेक्स्ट आवर वी आर रिमेम्बरिंग नन अदर देन ओपी रालहन, द ग्रेट प्रोड्यूसर, डायरेक्टर एंड एक्टर.

0: इन गानों को सुनकर ना मुझे ओपी रालहन जी की याद आती है. ओम प्रकाश रालहन, who was born on 21st of August 1928, Sialkot, which is now in Punjab, Pakistan. Now, he passed away on 20th of April 1999 at the age of 70, before his 71st birthday. And dekha jaye to inka naam aata hai as a writer, as a producer, as a director, as an actor. लेकिन ये सब एक दिन में नहीं हुआ था, काफ़ी सालों के बाद इनको एक ओहदा मिला और उन्होंने लोगों की मदद भी की जब उनका नाम बन गया. चलो बात करते हैं. इनकी शादी हुई थी हमारे राजेंद्र कुमार, जुबली कुमार, राजेंद्र कुमार जी की बहन के साथ मनोरमा, जिनका नाम अभी 21st August 1928 से लेकर 1947 तक सियालकोट में लिविंग विद अ प्रॉस्परस अरोरा फैमिली. इतनी प्रॉस्परस फैमिली, पैसे की कोई कमी नहीं, अच्छा सा कारोबार, सब कुछ अच्छा चल रहा था. तब 19 साल की उम्र थी और 1947 में द फैमिली वॉज कंपेल्ड, आई रिपीट, इट वॉज कंपेल्ड टू लीव होम. और बॉर्डर क्रॉस करके एज रेफ्यूजीज इन हिज ओन कंट्री ऑन द अदर साइड विच वॉज इंडिया. वहां पहुंच के कुछ था नहीं हाथ में, कुछ भी नहीं था, कुछ कपड़ों के सिवाय, ना पैसे, ना कोई ज्वारात. दे हैड जस्ट लेफ्ट एम्प्टी हैंडेड टू द टेरिटोरी विच रिमेन्ड विद इंडिया. नाउ हैविंग लॉस्ट ऑल देयर कैपिटल एंड बिजनेस, दे वर कंपेल्ड टू वर्क, छोटे मोटे काम करने के लिए. तभी ओपी यानी कि ओम प्रकाश, वो छोटी मोटी फिल्मों में छोटे मोटे रोल्स किया करते थे. अंटिल तकदीर का खेल, देखो तकदीर का खेल इतना अच्छा रहा. इनके जो ब्रदर इन लॉ राजेंद्र कुमार, जो एक ज़माने में स्ट्रगल कर रहे थे, उनको ब्रेक मिल गई और वो बड़े सुपरस्टार बन गए. ही बिकेम अ वेरी बिग एक्टर, ही बिकेम अ बिग फिल्म स्टार. आई वुड से सुपर स्टार, बट ही बिकेम अ बिग फिल्म स्टार, जिनकी सब फिल्में सिल्वर जुबली हिट्स होने लगी. सो इतने मशहूर हो गए, उन्होंने ओम प्रकाश जी से कहा, ओम प्रकाश रालहन, उनको कहा कि आप एक फिल्म बनाओ, आप डिस्ट्रीब्यूटर्स और फाइनेंशियर्स से बात करो कि मैं आपका हीरो हूँ तो आपको ईजिली फाइनेंस मिल जाएगा. और वही हुआ, उन्होंने फाइनेंशियर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स से बात की और कहा कि मेरे ब्रदर इन लॉ राजेंद्र कुमार विल बी द हीरो एंड हीरोइन विल बी माला सिन्हा, जिनका नाम उस ज़माने में काफ़ी ऊपर था. और फर्स्ट फिल्म डायरेक्ट की इन्होंने गहरा दाग, क्योंकि ही मैनेज टू गेट डिस्ट्रीब्यूटर्स टू फाइनेंस द फर्स्ट फिल्म. गहरा दाग 1963 की फिल्म, उसमें राजेंद्र कुमार और माला सिन्हा, जैसे मैंने कहा. एंड फिल्म तो इतनी कुछ खास नहीं थी, लेकिन इनका नाम दर्ज हो गया अमंगस्ट डायरेक्टर्स. एंड देन केम द सेकेंड फिल्म. सेकेंड फिल्म, ओ माय गॉड, फूल और पत्थर. ही डायरेक्टेड इट हिमसेल्फ विद द कास्ट इंक्लूडिंग मीना कुमारी, शशिकला, धर्मेंद्र. आपने जो गाना सुना शीशे से पी या पैमाने से पी, पिक्चराइज्ड ऑन शशिकला. धर्मपाजी बिकेम अ सुपर हीरो ओवरनाइट एंड एक सुपरस्टार बनने के लिए ऐसी फिल्म चाहिए थी और धर्मेंद्र जी को मिल गई वो फिल्म. और ओपी रालहन जो जी को भी वो फिल्म मिल गई, जिससे इनका नाम ऊपर आ गया. एंड उसके बाद ही नेवर लुक्ड बैक. ये फिल्म फूर और पत्थर तो तमिल फिल्म भी बन गई थी जो हिट हुई थी, जिसमें जयललिता थी हीरोइन। एनीवे आगे बढ़ते हैं, फिल्म तलाश 1969, यू नो डायरेक्टर एंड आल्सो इट्स प्रोड्यूसर दैट वाज ओपी रेलहन, जिसमें अगेन राजेंद्र कुमार विद शर्मिला टैगोर, एंड दैट वाज अ ह्यूज movie that was the most expensive movie of those times, and it was a musical hit. Excellent music by Sachin Dev Barman. ये गाना आपने सुना, मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में, और तलाश के सारे गाने सुपर डुपर हिट हो गए। हम इनको इसलिए याद कर रहे हैं because it is his 98th birth anniversary. ओम प्रकाश रालहन, इनका एक तरीका था काम करने का। ओपी रालहन इनके की कोलैबोरेटर्स जो थे, जैसे कि ही स्टक टू अ सिलेक्टिव ग्रुप ऑफ कंपोजर्स एंड लिरिसिस्ट्स टू क्रिएट क्या बोलते हाई ड्रामा साउंड ट्रैक्स फॉर हिज फिल्म। हर एक फिल्म का म्यूजिक इतना हिट होता था, जैसे कि म्यूजिक डायरेक्टर रवि मोस्ट फ्रीक्वेंट एंड म्यूजिकल पार्टनर ऑफ ओपी रालहन, जिन्होंने फिल्म गहरा दाग जो उनकी पहली डेब्यू डायरेक्शन थी उसका म्यूजिक दिया था रवि ने, और फूल और पत्थर का म्यूजिक दिया था रवि ने। और रवि जी ने फूल और पत्थर में लिरिसिस्ट यूज किए थे शकील बादायूनी जी को फॉर बोथ दी फिल्म्स गहरा दाग एंड फूल और पत्थर। एस डी बर्मन ने तलाश फिल्म की लिरिक्स मजरूह सुल्तानपुरी की थी, एंड देन कल्याण जी आनंद जी को इन्होंने सिलेक्ट किया फॉर बंदे हाथ 1973 की फिल्म, और पापी 1977 की फिल्म। 1977 की फिल्म पापी के लिरिसिस्ट थे वर्मा मलिक। अभी इन्होंने कितने लोगों की लाइफ बना दी वो मैं आपको बताता हूँ। He gave a break to Zinat Aman and Kabir Bedi. Zinat Aman, मैं जब भी किसी को पूछता हूँ कि Zinat Aman की पहली फिल्म कौन सी थी, दिल से हरे राम हरे कृष्णा देवानंद साहब ने इंट्रोड्यूस किया था, ये बात सही नहीं है। उनकी फर्स्ट हिट फिल्म थी हरे राम हरे कृष्णा, लेकिन ब्रेक तो पहली फिल्म में दी थी ओ पी रालहन जी ने Zinat Aman जी को, and that was the film Halchal. He introduced Zinat Aman and Kabir Bedi. So in dono ko introduce karne wale of course O.P. Rallhan. Abhi aage jate hue dekho to he boosted the careers of Amitabh Bachchan film Bande Haath. Tab wo itne jane pehchane nahi the industry mein Amitabh Bachchan, to unko ek boost mila film Bande Haath se. शम्मी कपूर और रागिनी, इन दोनों की लाइफ में जो बूस्ट आया एक एक्टिंग में, एंड दैट वाज फिल्म मुजरिम, एंड धर्मपाजी को स्टार बनाने वाले फूल और पत्थर फिल्म से, वो भी ओपी रालहन। दैट्स व्हाई वी आर रिमेम्बरिंग हिम टुडे। उनके नाम का एक चौक है, बांद्रा चौक, बांद्रा में एक चौक है जहाँ पे इनका नाम है ओपी रालहन चौक, एंड द ओपनिंग ऑफ दैट चौक वॉज डन बाय नन अदर देन धर्मेंद्र जी एंड Zinat Aman, हु सेड वी कैन नेवर फॉरगेट व्हाट ही हैड डन फॉर अस। सो रिमेम्बरिंग ओपी रालहन ऑन हिज 98th बर्थ एनिवर्सरी, सुनते रहिएगा उनके गाने।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: £1 in British sterling can fetch you up to 130.25 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gold Afternoons with Bali Brahmbhatt. Bali Brahmbhatt is sponsored by Gemin Foods. Tamara Tea Time no asli hero. Dal bhat, pav bhaji, biryani, namkeen, khakra, chikki, potato chip, mango pearl, pani puri, so many varieties for everyone. Marshe tamara najikna Asian shops ma.
3: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस. उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत.
4: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena, Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
5: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
6: 0730099823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को. सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे. विवेक हाउस वॉटफर्ड. बुक ऑन व्हाट्सएप 0730099823.
7: लोकेशन लोकेशन लोकेशन. इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियल, अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउन houses and villas
8: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
7: Fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube, prime location,
7: high appreciation
8: in Dubai.
9: Dad,
10: what's wrong, beta?
9: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to daddy in India.
10: I will run down to the money exchange now.
9: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
10: Oi, bale bale. I'm going to tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
11: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
12: It's December. Thand ko bolo goodbye.
5: Join Maharaja Tours on a 14-night Caribbean cruise departing 6 December with direct Virgin flights from Heathrow to Barbados. Khoobsurat beaches, sunshine or 8 amazing Caribbean islands aapka intezaar kar rahe hain. Prices from just £1,499 per person, twin share. Seats limited hai, to aaj hi book kijiye. Visit maharajatours.co.uk or call 07956-154-846.
13: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
14: Discover Malta and Gozo with a twin center island escape. Fly from a choice of UK airports year round and enjoy 3 nights in Malta. A ferry trip to Gozo for another 3 nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
15: Hey, फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
16: Well, she is talking about Jaimin Food Potato Chips. Crunchy, tasty and total desi swad in char mazedar flavors.
15: Crunch cannot wait. So visit your nearest ethnic store and grab your Jaimin Foods potato chips now.
17: Like a Gold. Officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LikeAGold.com.
1: Feel good track.
18: brought to you by Dairy Valley.
19: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: संगीत रवि का और शकील बदायूनी जी की लिरिक्स, व्हाट अ ब्यूटी। गहरा दाग ये फिल्म थी उनकी पहली डायरेक्शन ओपी राला।
1: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: This is Like a Gold, a part of the number one Asian commercial radio network in Greater London, the Like a Group.
3: Hey, this is Sandy Shah. Drive you home every Monday to Friday between 4 and 7 p.m. with the best tunes, mind games, and a bit of Ye Ya Wo. Only Like a Gold.
4: Like a Gold.
1: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: Southall Travel is known for its competitive holiday deals to Dubai. Contact Southall Travel today on 0208-574-8410. Southall Travel is at all protected.
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive. Leica Extra podcast update.
0: And this one is podcast episode 29. Is gold really the best investment? Hosted by Ravi Sharma. Ravi Sharma speaks to Mr. Praveen Patni, director of Minar Jewelers, about how gold prices are affecting customers and purchasing decisions. Like a extra podcast available on Spotify, YouTube, Amazon, Apple and other major streaming platforms.
1: Leica Extra is here. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
5: You're listening to Bali Brahmat in Gold Afternoons. Gold Afternoons. Proudly sponsored by Gemin Foods. Quality, taste and tradition in every pack. Find your favorites at Asian shops near you.
6: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल travelhub 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com
7: travelhub बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
6: एट ऑल प्रोटेक्टेड
7: विजिट travelhubworld.com
8: Anuj Chopra Foundation proudly presents An Evening of Elegance with the legendary Anup Chalota. On Sunday, 30th August at Queen's Theatre, Romford. Doors open 5 p.m. Show starts 6 p.m. Hosted by Anisa Nasir. Tayyar ho jaiye ek yaadgar sham ke liye jahan ghazals milti hai Bollywood se. Book now at queens-theatre.co.uk. Radio partners like our radio network.
6: भारतवंशियों का सबसे बड़ा राष्ट्रीय त्योहार स्वतंत्रता दिवस समारोह इंडियन डायस्पोरा एंड हाई कमीशन ऑफ इंडिया बड़ी धूमधाम के साथ मना रहे हैं 22 अगस्त शनिवार को लव नाइट सेंटर हेज में आइए और सबको लाइए फ्री एंट्री पार्किंग एंटरटेनमेंट फूड भारतीय व्यंजन ध्वजारोहण और जनगणमन गायन 22 अगस्त शनिवार को सुबह 10 बजे से
9: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
10: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy.
9: Live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs.
10: With the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
9: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
10: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
11: Packed for the trip? Gifts? Passport?
12: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
11: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
12: Simzy?
11: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
13: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's S-I-M-Z-Y.com.
14: T's and C's apply. मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। टीएनसी सप्लाई।
15: इल्फर्ड, अब असली इंडियन फ्लेवर्स का मजा लीजिए।
16: बीकानेर वाला परंपरा भी,
17: फेमस छोले भटूरे, राज कचौरी, मिठाई और बहुत कुछ आपका इंतजार कर रहा है। मिलते हैं 513-519 क्रैनब्रुक रोड, गैंसिल, इल्फर्ड, IG26HA। कॉल 07555-506015।
18: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 02087672142.

0: Glas, ab her Star Glas.
1: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. This is Leica Gold across Greater London.
2: ये बताना जरूरी था क्योंकि मैंने बाद में सोचा बंदे हाथ दैट वॉज नॉट कल्याण जी आनंद जी, पता नहीं क्यों मैंने कल्याण जी आनंद जी का नाम ले लिया था। आर डी बर्मन ने संगीत दिया था बंदे हाथ का और मजरू सुल्तानपुरी ने लिरिक्स लिखी थी। ये नेक्स्ट गाना जो है सुन लीजिएगा, वी आर रिमेम्बरिंग ओ पी रेलहन, सॉरी इफ आई मिसगाइडेड यू देयर।
3: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

तलाश कर ले। फिल्म तलाश का 1969 का ये गाना इतना खूबसूरत गाना है। इट प्रोजेक्ट्स अ चीयरफुल ग्रैंड एंड होपफुल एटमॉस्फेयर एंड कैप्चर्स द फीलिंग ऑफ सर्चिंग फॉर अ लव्ड वन, तेरे नैना तलाश कर। और राग है छायानाथ, इट्स अ ब्यूटिफुल इवनिंग राग। इसका टाइम होता है लेट इवनिंग वाला राग, एंड जैसे कि 7 बजे से 10 बजे तक का राग। नेक्स्ट गाना जो है वो ऐसा एक गाना है जिसमें सैडनेस बहुत है, रफ़ी साहब ने गाया है, और वो है फिल्म पापी का।

0: अपने खून को गले लगाना, नहीं तेरी तकदीर में।
1: ये गाना जीवन के गहरे दुखों और इंसान की बेबसी को दिखाता है। जीनत अमान पे पिक्चराइज हुआ ये पूरा गाना, रफी साहब ने गाया। फिल्म पापी, ओपी रेल।

0: म्यूजिक ऑफ एन दत्ता और लिरिसिस्ट साहिल लुधियानवी। वाह वाह वाह, ये गाना सुनकर ही मुझे साहिल लुधियानवी जी की जो आदतें थी वो सब मुझे याद आ रहा है। अब मैं आपको समझाता हूँ मैं क्यों ये बोल रहा हूँ। बिकॉज ही वॉज वेरी डिमांडिंग। एक तो क्या था कि वो म्यूज़िक डायरेक्टर्स को कहते थे कि कोई ट्यून ऑलरेडी बनी हो उसके ऊपर मुझे लिखने को मत कहो, मेरी लिरिक्स जो है उसके ऊपर आप कंपोज करो। So you choose my lyrics, and once the lyrics are chosen, then you compose on top of it. Because tab aapko feel aayegi meri lyrics ki aur kya music aapko compose karna hai. That was his style. And matlab ego ki baat bolo, to Lata Mangeshkar ji ko jo payment mil rahi thi, unka demand tha ke mujhe exactly 1 rupee more than Lata Mangeshkar chahiye. That's it. And that triggered a major professional rift, no doubt about it. काफ़ी लोगों के साथ अनबन हो जाती थी because of his artistic mood, I would say. Creative control जो होता था. And he fought for the rights of lyricists, successfully compelling All India Radio to credit song lyricists on air. पहले गाने सुनाई देते थे All India Radio पे और सिंगर का नाम बोलते थे, म्यूजिक डायरेक्टर का नाम लेते, लिरिसिस्ट का नाम कभी आता ही नहीं था। एंड ही फियर्सली फॉट टू गेट द राइट्स। सो आई रियली हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर साहिल लुधियानवी जी, फेमस फॉर हिज पोएटिक अथॉरिटी। ही इंसिस्टेड दैट लिरिक्स शुड टेक precedence over the musical tune. And not only that, he worked heavily with composers that respected that boundary of his. And S.D. Barman ke saath legendary early partnership for Gurudat films, Pyasa aur Bazi films. Phir Ravi, music director Ravi ke saath, it was most commercial and successful pairing इन दोनों की जो थी, म्यूज़िक डायरेक्टर रवि और साहिल लुधियानवी जी की। फिल्म गुमराह देखो, म्यूज़िक देखो, धूल का फूल, मीनिंग देखो, लिरिक्स देखो, और उसके ऊपर रवि जी ने उसके ऊपर संगीत डाला। रोशन जी ने भी डीपली सोलफुल कोलैबोरेशन जो बोलते ना, वो रोशन जी के साथ उनकी थी। मैग्निफिसेंट गज़ल्स एंड कवालीज, बरसात की रात, ताजमहल, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। फिर एन दत्ता और जयदेव जी दोनों के साथ दे हेल्प्ड साहिल लुधियानवी बाय गेटिंग हिम टू राइट शार्प सोशली कॉन्शियस पोएट्री फॉर देम। और फिर साधना, फिल्म साधना और हम दोनों, इन दोनों की फिल्मों में इन्होंने लिख के दिया। खयाम साहब की तो बात ही छोड़ो, देखो म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात थी। कभी कभी और त्रिशूल जैसी फिल्मों में वो उन्होंने लिखा, लेकिन एक फिल्म थी, फिल्म फिर सुबह होगी। जब वो उस फिल्म पे काम कर रहे थे, ही रिजेक्टेड द असाइंड मेनस्ट्रीम कंपोजर। जिसको असाइन किया हुआ था उसको निकाला, क्योंकि उन्होंने कहा कि पिक खयाम। Why? Because he was insisting on someone who deeply understood the source novel, Crime and Punishment, जो novel थी जिसके ऊपर ये film बनी थी। फिर सुबह होगी, उस film का music और जो भी इन्होंने गाने लिखे उसके ऊपर, फिर सुबह होगी, उसके अंदर जो मुकेश जी ने गाया, ओहो हो हो हो, क्या लिखा इन्होंने, वो सुबह कभी तो आएगी। और राज कपूर जी उस फिल्म में थे। एंड ही वॉज सो इंसिस्टेंट अपॉन हु शुड राइट डू द म्यूज़िक। एंड इन्होंने खयाम जी को डाल कर ही रहे, बिकॉज उन्होंने कहा जो ये स्टोरी समझ नहीं सकता वो कैसे म्यूज़िक देगा। एंड दैट वॉज साहिल लुधियानवी। आई बीन स्टोरिंग दिस फॉर द होल वीक बिकॉज आज फ्राइडे है। ही इज़ अवर आर्टिस्ट ऑफ द वीक एंड मेरा आखिरी दिन है फॉर द वीक। And it'll continue Saturday and Sunday. You keep listening to our artist of the week, Sahil Ludhianvi. Laika Radio 90s.
1: Leica Radio Punjabi, Leica Gold 2, now available on the Leica Radio mobile app and Alexa.
0: Okay, what's going on around town? Of course, everybody knows Sunil Grover live, and we got Diwali Story and Atif Aslam and Raga San, our partnership with the premium hospitality brand. And Aftab Shiv Dasani, Jay's Entertainment, brings to you Bollywood legend live, Bollywood legends live in London with Aftab Shiv Dasani, singers Amantrika and Mayuri Patalia, Saturday 3rd of October at Harrow Arts Center. Tickets from box office, exclusive radio partner Leica Radio. And Kavita Krishnamurthy, jo mere saath 27 August ko live aayengi online on mere show pe, Gold Afternoons pe, on 27th of August, to talk about her show at the Royal Albert Hall. Kavita Krishnamurthy performs live at the Royal Albert Hall on Sunday, 1st of November, brought to you by Sanatan Events as a Diwali special. Tickets from the venue box office, that is Royal Albert Hall box office, exclusive radio partner Leica Radio Network.
2: Gold Afternoons is sponsored by Gemin Foods, the authentic taste of India. From classic snacks to new flavors, find your favorites at your nearest Asian store.
3: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
4: TravelHub, best service with unbeatable price.
3: At all protected.
4: Visit TravelHubWorld.com.
5: पल भर के लिए
6: किशोर कुमार की मस्ती और मोहम्मद रफी की सोलफुल आवाज. इब्रोक्स इवेंट्स प्रेजेंट्स द आइकॉनिक ड्यूओ रफी एंड किशोर फीचरिंग फहद यफ अकॉम्पनीड बाय 7-piece बैंड एंड मनीषा शर्मा. गोल्डन एरा के एवरग्रीन गानों को रिलिव कीजिए संडे 6 सितंबर 5 PM एट हैरो आर्ट सेंटर. टिकट स्टार्ट फ्रॉम जस्ट £25. बुक टिकट्स एट harroartcenter.com. बॉक्स ऑफिस का नंबर है 0203-773-7161. एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स Leica Radio Network.
7: Location, location, location. Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
8: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
7: Fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel, prime location,
7: high appreciation
8: in Dubai.
9: वॉटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी.
10: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन.
9: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स बटर चिकन पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम.
10: फ्रेंड्स फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए. विजिट विवेक हाउस वॉटफुट. कॉल 01923227274. बुक योर टेबल टुडे. लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है. शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए. गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है. जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी. आज ही हमारे हैरो पिकलवुड और स्लॉगो के शोरूम्स में आइए या फिर keyfurniture.co.uk पर जाएं.
11: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए. दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
1: विजिट mantrahollidays.co.uk और कॉल 0203-773-6333 नाउ. एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज. व्हाट्स योर Your travel mantra.
6: मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। टीएनसी सप्लाई।
5: नोक झोक, सीक्रेट्स, अनलिमिटेड लड़ाई और अनलिमिटेड बातें। दुनिया के सबसे अनोखे इस भाई बहन के रिश्ते को सालों साल मीठा बनाता राखी का त्योहार। सेलिब्रेट करें अपनों के साथ और साथ साथ जैमिन फूड्स की एथनिक इंडियन वैरायटी भी, जहां है खाखरा, नमकीन, भाखरी, चिक्की, सोन पापड़ी, पिकल्स और बहुत कुछ।
12: अवेलेबल एट एथनिक ग्रोसरी स्टोर नियर यू। जैमिन फूड्स विशेस यू ऑल अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन।
13: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए meenarjewelers.com। कॉल 02087677627।
1: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
14: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: लॉस अब है स्टार प्लस, उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।
1: हेलो रे हेलो, आज जन्माष्टमी कान्हा ना रंगमा लंदन पड़ रंगा से। स्टार मीडिया प्रेजेंट्स जन्माष्टमी भजन जैमिंग विद नंदलाल छांगा। भक्ति ना सुर, गरबानी मस्ती अने कृष्णा सेलिब्रेशन ऑल इन वन अनफॉरगेटेबल इवनिंग। 5th September, Wembley. 6th September, Crawley. Tickets only £25. Book now. Call 0794092467. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
2: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
3: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
4: Southall Travel can take you there. Southall Travel, at all protected.
5: कुछ आवाजें सिर्फ गाती नहीं, जिंदगी भर याद रह जाती हैं। और अब वही खूबसूरत आवाज पहली बार आ रही है यूके। इंडियन आइडल फेम सुगंधा डाटे लाइव इन कॉन्सर्ट संडे द 6th ऑफ सितंबर एट द मेशा लोहाना सेंटर लंदन। अपनी सीट्स अभी बुक कीजिए। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल अश्विन ऑन 07956278228। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क।
6: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागसन।
7: Celebrate Krishna Janamashtami in a truly vibrant way. Join us on Sunday the 30th of August from 2 p.m. to 8 p.m. at Navnath Center, Printing House Lane, Hayes, UB3 1AR. Live music, Ramayan play, Ras Leela, delicious food, fun fair, shopping and free entry with free parking. Book a stall for your business before the 15th of August by calling Ramesh Shah on 07742045154. Exclusive radio partner, Leica Radio Network. This ad is sponsored by Jamin Foods.
8: Location, location, location. Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
9: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
8: Fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
9: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
8: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
9: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danio, prime location,
8: high appreciation
9: in Dubai.
10: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
11: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
10: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
11: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
10: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
11: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. Limited offer. Terms and conditions apply.
12: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
13: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.

0: मेरे महबूब, मेरे सनम और मेरा जिगरी दोस्त आ गया इधर, एंड दैट सैंडी शाह इज गोना टेक ओवर फ्रॉम 4 टू 7 विद द ड्राइव टाइम, एंड ऑन लाइक आवर रेडियो मिडलैंड्स इज गोना बी एनिका इन प्लेस ऑफ राज पद्दन. हैव अ वंडरफुल वीकेंड. आई विल कम बैक विद सम मोर ट्रिब्यूट्स एंड सम ये या वो. As Sandy would say.
1: Feel good hits in the sun with Like a Gold.
0: Bye all. Pali Brahmad ka namaskar. Film hai Sachchai.

0: बाकी से जो परसों पर झूठे को आराम न आए, लेकिन सच्चे को पल भर में कांटों पर भी नींद आ जाए।
1: ऐ दोस्त, ऐ दोस्त।

0: का साथ दिया, गिरते को यहाँ किसने थामा, किसने उसको हार दिया।
1: ए दोस्त, ए दोस्त, ए

0: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस, उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।
1: कुछ आवाजें सिर्फ गाती नहीं, जिंदगी भर याद रह जाती हैं। और अब वही खूबसूरत आवाज पहली बार आ रही है यूके। इंडियन आइडल फेम सुगंधा डाटे लाइव इन कॉन्सर्ट Sunday the 6th of September at the Mesha Lohana Center, London. Apni seats abhi book kijiye. For more information, call Ashwin on 07956-278-228. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
2: Celebrate Krishna Janamashtami in a truly vibrant way. Join us on Sunday the 30th of August from 2 p.m. to 8 p.m. at Navnath Center, Printing House Lane, Hayes, UB3 1AR. Live music, Ramayan play, Ras Leela, delicious food, fun fair, shopping and free entry with free parking. Book a stall for your business before the 15th of August by calling Ramesh Shah on 07742 045 154. Exclusive radio partner, Leica Radio Network. This ad is sponsored by Jamin Foods.
3: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
4: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है। शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉगो के शोरूम्स में आइए या फिर kfurniture.co.uk पर जाएं।
5: वॉटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी,
6: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन।
5: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
6: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस वॉटफुट, कॉल 01923227274। बुक योर टेबल टुडे।
7: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 019-238-83100. Atoll protected.
8: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर, 181 अपर टूटिंग रोड, या विजिट कीजिए minarjewelers.com, कॉल 02087677627।
9: गेट रेडी यूके, स्नेल ग्रोवर इज कमिंग लाइव विद गुत्ती, डॉक्टर मशहूर गुलाटी, रिंकू बाबी एंड मोर सरप्राइजेस ऑन द नाइट।
10: एक्सपेक्ट म्यूजिक मैडनेस, फैमिली एंटरटेनमेंट एंड नॉनस्टॉप लाफ्टर। स्नेल ग्रोवर लाइव यूके टूर 2026 हैपनिंग ऑन द 29th ऑफ अक्टूबर at the Over Arena Wembley in London.
9: 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
10: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
9: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
11: साउथ हॉल देसी स्वाद का असली अड्डा आ गया है।
12: बीकानेर वाला परंपरा भी,
13: बीकानेर वाला में मिलेंगे फेमस छोले भटूरे, टेस्टी स्नैक्स, मिठाई और फैमिली के साथ यादगार मोमेंट्स। आइए 60 किंग स्ट्रीट साउथ हॉल, UB2 4DB, कॉल 07795181001।
14: Leica Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LeicaGold.com.
15: This is Sandy Shah on Gold Drive.
16: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: Mamster નું પાણીપુરી અને પાણીપુરી નો પાણી.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at Quality Food branches.
2: रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
3: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
2: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
3: रॉयल चाय ब्रूड फॉर बिजनेस.
2: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. लिमिटेड ऑफर. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
4: लाइका गोल्ड लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर, DAB डिजिटल रेडियो पर. एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइका गोल्ड और ऑनलाइन सुनो लाइकागोल्ड.com पे. फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
5: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Cool Drive with Sandy Shah. Oh yeah. TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
1: TravelHub, best service with unbeatable price.
0: At all protected.
1: Visit TravelHubWorld.com.
2: मुकेश और लता मंगेशकर के एवरग्रीन गानों की यादों में एक खूबसूरत म्यूजिकल शाम. पंकज सोढ़ा प्रेजेंट्स हम तो तेरे आशिक.
3: हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुरा.
2: स्वीट मेमोरीज ऑफ मुकेश एंड लता विद संगीता मेलेकर और मुख्तार शाह लाइव बैंड के साथ. 29th August हेच एंड हाई स्कूल हैरो. 30th August वुडमैनस्टोन स्कूल साउथ लंदन. डिनर फ्रॉम 5 PM. शो स्टार्ट्स एट 7 PM. फॉर टिकट्स एंड मोर इन्फॉर्मेशन कॉल दीपा ऑन 07947561947.
4: 07300998823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को. सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे. विवेक हाउस वॉटफर्ड. बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823. आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है? इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे. कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस. कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208922334 24 आवर लाइन.

0: इल्फर्ड। अब असली इंडियन फ्लेवर्स का मजा लीजिए।
1: बीकानेर वाला परंपरा भी,
2: फेमस छोले भटूरे, राज कचौरी, मिठाई और बहुत कुछ आपका इंतजार कर रहा है। मिलते हैं 513-519 क्रैनब्रुक रोड, गैंसिल, इल्फर्ड, IG26HA। कॉल 07555056015।

0: breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on diwalistory.com.
1: Dad!
2: What's wrong, beta?
1: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to Daddy in India.
2: I will run down to the money exchange now.
1: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
2: Oi, bale bale. I'm going to tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
3: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
4: What would make dinner plans? Thoda classy, thoda desi.
5: To आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन
4: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स बटर चिकन पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम
5: फ्रेंड्स फैमिली या स्पेशल नाइट आउट इसे यादगार बनाइए विजिट विवेक हाउस वटफोर्ड कॉल 01923227274 बुक योर टेबल टुडे
6: खाकरा क्रंच भाकरी मंच चिक्की स्वीट पापड़ बीट Pickles Heat. ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक.
7: Add देसी तड़का to your routine with जयमिन फूड के variety of snacks. खाखरा नमकीन पापड़ pickles चिक्की pot meals and much more.
6: जयमिन फूड्स देसी cravings available at nearest ethnic grocery stores.
8: Gold Drive with Sandy Shah.

0: गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस। कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3344-24 आवर लाइन।
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान
2: देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग,
1: डेजर्ट सफारी,
2: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
1: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
2: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
3: साउथ हॉल ट्रेवल at all protected.
4: Imagine turning your next cake box order into a magical family adventure. This August, every online cake box order is automatically entered into our prize draw to win a family trip for four people to Disneyland Paris. So celebrate birthdays, special moments and summer memories with Cake Box, and you could be celebrating in Disneyland too. Order online this August at cakebox.com. Cake Box, celebrate today and make memories forever. TNCs apply.
5: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 0208-8839-0880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
6: लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन। Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel, prime location,
6: high appreciation
7: in Dubai.
8: पल भर के लिए
9: किशोर कुमार की मस्ती और मोहम्मद रफी की सोलफुल आवाज। इब्रोक्स इवेंट्स प्रेजेंट्स द आइकॉनिक ड्यूओ रफी एंड किशोर, फीचरिंग फहद यफ अकॉम्पनीड बाय 7-piece बैंड एंड मनीषा शर्मा। गोल्डन एरा के एवरग्रीन गानों को रिलिव कीजिए संडे 6 सितंबर 5 PM एट हेरो आर्ट सेंटर। टिकट स्टार्ट फ्रॉम जस्ट £25। बुक टिकट्स एट heroartcenter.com। बॉक्स ऑफिस का नंबर है 0203-773-7161। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स Laika Radio Network.
10: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
11: वेल, शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची, टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स।
10: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ।
12: Ashwini, in for Anisa Nasir on the evening show on Laika Gold.
13: बातें चटपटी चाहिए और गीत चाहिए ओल्ड, मनोरंजन की दुनिया में 24 कैरेट गोल्ड। रवि शर्मा का मनोरंजन प्रोग्राम लाइका गोल्ड पर सुनिए।
14: मंडे टू फ्राइडे ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: भाई जिन्होंने अभी भी ट्यून इन किया है, आप सभी सुन रहे हैं लाइक अ गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइक अ रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी। फैंटास्टिक फ्राइडे मनाएंगे आप और हम साथ साथ 7 बजे से लेके रात 10 बजे तक। पूछें आप सबसे कैसे हैं आप सब, कैसा रहा पूरा सप्ताह, ये तो आपने मुझे रोज़ बता दी, लेकिन फैंटास्टिक फ्राइडे के लिए आज आप तैयार कैसे हैं ये बताइए। मतलब खा पी के हो गई ना सब तैयारी, क्योंकि अब फुल ऑन डांस मस्ती होने वाली है ना। आपको तो पता है अभी पैटर्न ओवर द मंथ्स आपको समझ में आ गया कि फ्राइडे क्या होता है। सो अटेंडेंस रजिस्टर खुल चुके हैं, हमारे सारे प्यारे प्यारे धुरंधर आके अपनी अपनी अटेंडेंस लगवा रहे हैं। इस आवर का आगाज हमने किया था माई फेवरेट सॉन्ग तम्मा तम्मा से, थानेदार से लिया था ये गीत हमने, एंड उसके बाद में किशोर कुमार की मस्ती भरी आवाज़ में क्या मतलब एनर्जी है ना इस गाने में, पैसा ये पैसा, लव दिस ट्रैक, कर्ज फिल्म से लिया था आप सभी के लिए। अगले जो गाने हैं एज आई सेड प्लीज़ तैयार रहिएगा अपने पैर थिरकाने के लिए, एंड मस्ती मज़ा इंटरेक्शन चलते रहेगा। लाइव थियरी लाई है अश्विनी, बिल्कुल लाई है। कोई सवाल थोड़ी देर में सवाल पूछते हैं अभी, आप फिलहाल आज फ्राइडे है ना, मैं सोच रही हूँ कि इतने गुड चिल्ड्रेन हैं हमारे इस क्लास में कि क्या होमवर्क दिया जाए नहीं दिया जाए, छोड़ दिया जाए होमवर्क दिया जाए, बताओ।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: एक पाउंड के बदले आपको मिलेगा 130 इंडियन रुपी एंड 25 पैसे। डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच ऑनलाइन और एसबीआई योनो मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच। टीज एंड सीज अप्लाई। दिस इज अश्विनी ऑन लाइक अ गोल्ड।
2: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस, उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड, और उत्सव भारत है स्टार भारत।
3: Here at Acorn Insurance, we help taxi drivers like you, so you can help people like Jasmine.
4: Oh, terrible weather.
3: It's raining cats and dogs out there, and she doesn't want to look like a drowned rat for an interview. You help Jasmine stay dry, and we'll help keep you covered.
5: See ya, good luck with the interview.
4: Thank you, bye.
3: Acorn Insurance, the UK's largest taxi insurance specialists. Find out more at acorninsure.co.uk/taxi. Acorn Insurance and Financial Services Limited is authorized and regulated by the Financial Conduct Authority.
6: 07300998823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को। सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग, और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे। विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823.
7: Get ready UK, Snell Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi, and more surprises on the night.
8: Expect music, madness, family entertainment and non-stop laughter. Sunil Grover Live UK Tour 2026, happening on the 29th of October at the Over Arena Wembley in London.
7: 31st October, Mattioli Arena Leicester, produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
8: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
7: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
9: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
10: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
9: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
10: And you didn't pay those massive roaming charges?
9: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
8: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
11: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है। शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉग के शोरूम्स में आइए या फिर keyfurniture.co.uk पर जाएं।
8: मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट मेरा बॉयलर.com। टीजीसी सप्लाई।

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: चलिए मिला लेंगे घड़ियां, एक बार देखते हैं टाइम कितना है। 7:28। जिन्होंने अभी भी ट्यून इन किया है, आप सभी सुन रहे हैं लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। और सवाल पूछ लूँ मैं अभी, फिर उसका जवाब देना आप लोग शुरू कर दोगे। अच्छा, फ़ोन की बैटरी, ठीक है। अब ये जो है काफ़ी बर्निंग टॉपिक रहता है मोस्ट ऑफ द घरों में कि फ़ोन की बैटरी कम ज़्यादा। तो आपके सर्कल में कोई ना कोई ऐसा होगा जिसकी फ़ोन की बैटरी हमेशा डाउन होती है। आपके घर में हो सकता है कोई, आप ऐसे हो सकते हैं, आपके दोस्त कोई हो सकते हैं। तो फ़ोन की बैटरी जब डाउन होती है तो उसके लिए सार्कास्टिकली कमेंट्स आप सुनते हैं क्या या सुनाते हैं क्या, ज़रूर बताइएगा। क्योंकि हमारे सर्कल में मेरी एक दोस्त हैं, जब भी हम बात करने बैठे तो आई मेरे फ़ोन की जो बैटरी है इतनी, एंड वी ऑल गेट यू नो, मतलब आप समझ सकते हो जब फ्रेंड्स बात करती हैं और किसी ने ऐसे बोल दिया तो सामने वाले का क्या हाल होता होगा। चलो, फ़ोन बैटरी के बारे में आपके जो अनुभव हैं मुझे लिख के भेज दो कि कभी बैटरी कम हुई ज़्यादा हुई तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ। या फ़ोन बैटरी के लिए फॉर मी, मैं मेरे घर में जो है माई बेटर हाफ ऑलवेज, मतलब अगर 99% भी बैटरी है तो भी हिल सार्कास्टिकली से देखो 99% ही है, 100% नहीं है, तुमने चार्जिंग पे नहीं लगाया अपना फ़ोन। ओके, आई एम श्योर सबके घर में ऐसे सुनने मिलता होगा। सो आपके घर में आपको कौन सुनाता है फ़ोन चार्जिंग के लिए? मैंने मेरा बता दिया भाई किस्सा, आप अपना बताइए। ठीक है, तो एक गीत सुनाते हैं और उसके बाद में फिर चलेंगे लाइफ थियरी की तरफ।
0: ये है लाइका गोल्ड द इवनिंग शो विद अश्विनी।

0: चलिए, जिस चीज का आपको इंतजार रहता है, आप सभी का फेवरेट सेगमेंट लाइफ थियरी सेगमेंट। तो आज की लाइफ थियरी का नाम है द ओशन थियरी। भाई नदी बहते बहते कितने गांव, कितने गली कूचे तो नहीं कह सकते, लेकिन अलग अलग शहर और अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग देश और नदियां जाके सीधे मिलती हैं समुंदर से। अब समुंदर के पास तो खुद का इतना पानी है, ऐसा क्यों होता है कि नदी जाके समुंदर से मिलती है? रेगिस्तान पूरा सूखा पड़ा है, वहाँ पे पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन वहाँ पे नदी बहते हुए क्यों नहीं जाती? चलिए सीधे पॉइंट पे आते हैं। हमारी ज़िंदगी में हम जैसे हैं, जैसे बिहेव करते हैं, तो कहा जाता है ना, जो जैसा होता है वो वैसा ही पाता है। समंदर ऑलरेडी अपने पास में इतना पानी लेके बैठा है और फिर भी नदी उसके पास चली जाती है, क्यों? क्योंकि बहाव जो है नदी का, वो उसे खींच के ले जाता है समंदर के पास। वहाँ जब वो मिलती है, तब वो अपने आप को महसूस करती है किसी और बड़े ओशन में मिल जाने का जो आनंद, जो सुख होता है, जो फीलिंग होती है, वो नेक्स्ट लेवल पे होती है। सो, कहना यही है भाई कि राजस्थान में अगर पानी होता है, वहाँ पे डेजर्ट है, लेकिन डेजर्ट में क्यों वहाँ पे नदी बह के नहीं जाती है? अगेन पॉइंट यही है, जैसे आप होते हैं वैसी चीज़ें होती हैं। मतलब अगर आप कहते हैं कि भाई बस मैं दुखी हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे तो सारे बुरे लोग ज़िंदगी में यहीं पे मुझे ही मिले, मेरे ही साथ ऐसा हुआ है, सो जो आप बोलते रहेंगे ना, वैसा यूनिवर्स आपको देता रहेगा। अगर आप कहेंगे कि दुनिया के बेस्ट लोग मेरे पास में, ज़िंदगी के सबसे अच्छे फेस में मैं हूँ, मैं हर चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ या समझ सकती हूँ, मुझे किसी चीज़ का मलाल नहीं है, मैं सबकी अच्छाई में अच्छा मानता हूँ, मेरे पास में बहुत पैसा है और दूसरों को पैसा देने में बिलीव भी करते हैं, दूसरों को खुशी देने में बिलीव करते हैं, तो जो लोग देने में बिलीव करते हैं ना कि चलो खुशियाँ बांटो, दूसरों के गम दूर करो, उनका साथ दो, तो उनको वैसी ही चीज़ें और वैसे ही लोग ज़िंदगी में मिलते रहते हैं। और अगर कोई इंसान है जो हमेशा रोता रहेगा, हाय मेरे साथ में ये, हाय मेरे साथ में वो, तो उनके साथ वही होगा। आप जिस फ्रीक्वेंसी पे होते हैं, उसी फ्रीक्वेंसी की चीज़ आपको मिलती है। आपको 92.5 FM लगाना है, और अगर आप वो ट्यून इन नहीं कर पा रहे, आप ट्यून इन करके बैठे हैं 80 point something, तो 92.5 तक कैसे पहुंचोगे, है ना? आपको उस फ्रीक्वेंसी के लिए पहुंचने के लिए अपने आप को ऐसा बनाना पड़ेगा ना। सो ये चीज़ जो है कि हमेशा हमारे बुजुर्ग भी कह के गए हैं, हमारे यहाँ कहा भी जाता है कि वास्तु जो होती है ना, जो आप कहते हैं तो तथास्तु कहती है, जो यूनिवर्स होता है वो हमेशा कहा जाता है, हमारे बड़े बुजुर्ग कह के जाते हैं कि अच्छा बोलो अच्छा पाओगे। मेरी आई हमेशा कहती थी, अब जब मैं सोचती हूँ कि मेरी मम्मी, मेरी आई मुझे क्या समझाने की कोशिश करती थी, तो हमेशा कहती थी कि बेटा अच्छा बोलो अच्छा मिलता है लाइफ में सब। सच में उसकी वो सीख मेरे काम में आई, एंड देखो ना आप जैसे कितने प्यारे और अच्छे लोगों के साथ में मैं लाइफ में जुड़ी हूँ। तो ज़िंदगी में अगर अच्छा चाहते हैं तो अच्छा बोलिए, अच्छा काम कीजिए, क्योंकि कर्मा जो है ना वो अपना बिल्कुल अपना कमाल दिखाता है। आप भी अपनी ज़िंदगी में अपने कर्मा की तरफ ध्यान दीजिए, अच्छा देंगे अच्छा ही पाएंगे, है ना? जैसे वो नदी पहुंच गई समुंदर तक, आपको क्या लगता है, आप नदी समुंदर में से किसकी जर्नी पे हैं अभी? हाँ मुझे मत बताइएगा, ये सवाल आपके अपने आप के लिए है। आप नदी है या समुंदर, सोचिए, और कैसी लगी आज की थियरी उस पर भी जरूर बताइएगा। चले फिर से फैंटास्टिक फ्राइडे की तरफ।
1: Hey there, मैं हूं बाली ब्रह्मभट्ट। Catch me on my show Gold Afternoons with tributes, अनसुनी बातें, राग आधारित गाने on Like a Gold and Like a Radio Midlands from 1 PM to 4 PM. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Right here, right now.
3: Football is back on Sky Sports, and you can stream it on Now.
4: It is game on Now.
3: With 1,500 matches this season from the Premier League, WSL, the EFL and the Scottish Premiership.
4: Wow.
3: You can stream in minutes, and with flexible plans, you can have it your way.
4: Now that is world class.
3: Stream Sky Sports on Now today.
5: Right now. 18 plus UK only. Broadband 2.5 megabits per second required. Full terms apply.
6: This is Ash Winnie on Like a Gold.
7: Like a Gold.
8: Grow
1: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com.
3: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
3: विजिट travelhubworld.com.
6: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
7: Two businesses.
8: Same town.
7: Same service.
8: One appears on page one of Google.
7: The other doesn't.
8: Guess which one gets the customer?
7: The truth is brutal.
8: The first page of Google gets the business.
7: Everyone else gets what's left.
8: So here's the real question.
7: When your customers search for what you sell, do they find you?
8: Visit HeartyHanks.com and stop letting Google choose your competitors.
7: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
9: Celebrate Krishna Janamashtami in a truly vibrant way. Join us on Sunday the 30th of August from 2 p.m. to 8 p.m. at Navnath Center, Printing House Lane, Hayes, UB3 1AR. Live music, Ramayan play, Ras Leela, delicious food, fun fair, shopping and free entry with free parking. Book a stall for your business before the 15th of August by calling Ramesh Shah on 07742 045 154. Exclusive radio partner Leica Radio Network. This ad is sponsored by Jamin Foods.
10: सप्टेम्बर મહિનામાં હાસ્યનો ડબલ ધમાકો ફરી આવી રહ્યો છે.
11: તમે બધા પુરુષો તો લગ્ને કુવારા હો છો.
12: એ તમે સ્ત્રીઓ અમને છે ને પુરુષોને આમ ખોટા ઓગવવાનું બંધ કરો.
10: કોમેડી કિંગ નિમેશ શાહ અને ક્વીન ઓફ કોમેડી મલ્લિકા શાહ લઈને આવી રહ્યા છે સુપર હિટ ગુજરાતી નાટક હાલો પટેલભાઈની જાનમાં. હવે રાઇસલી, પોટર્સ બાર, ઇલફર્ડ, સાઉથ લંડન અને લ્યુટનમાં. ટિકિટ્સ અને વધુ માહિતી માટે આજે જ કોલ કરો મંજુને ઓન 07931534270. નાટકનું નામ યાદ રાખજો.
13: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 019-238-83100. Atoll protected.

0: नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है.
1: Sounding better than ever in the sunshine. This is Leica Gold.

0: पाकिस्तान एंड बांग्लादेश स्विफ्टली फ्रॉम योर फोन।
1: एक पाउंड के बदले आपको मिलेंगे 130.65 इंडियन रुपी, 378.9 पाकिस्तानी रुपी, 449.28 श्रीलंकन रुपी, 166.77 बांग्लादेशी टाका, 88.93 अफगान अफगानी, 1.36 यूएस डॉलर्स, 176.67 केनियन शिलिंग, 63.62 मॉरिशियन रुपी।
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. LIKA Gold. Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com. Or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: Gold is currently trading at £108.57 per gram.
0: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
1: टिक टिक करते हुए घड़ी कह रही है, एक बार जरा घड़ी में ला लो। तो इट्स नियरली 51 मिनट्स पास्ट 7, हम चल रहे हैं इस आवर के आखिरी गीत की तरफ।
0: Ashwini, brightening up your weeknights.
2: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस। उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।
3: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, Gold Souk, desert safaris and Dhow Cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
4: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
5: Southall Travel, Atoll Protected.
6: Watford mein dinner plans, thoda classy, thoda desi.
7: To aaiye Godfather and Co. Vivek House Bar and Kitchen.
6: From crispy starters, butter chicken, paneer tikka masala se biryani tak, fresh bread and refreshing drinks. Har bite mein lajawab flavors aur vibe bilkul premium.
7: Friends, family ya special night out, ise yaadgar banaiye. Visit Vivek House Watford. Call 01923-2272-74. Book your table today.
8: मुकेश और लता मंगेशकर के एवरग्रीन गानों की यादों में एक खूबसूरत म्यूजिकल शाम। पंकज सोढ़ा प्रेजेंट्स हम तो तेरे आशिक।
9: हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुरा।
8: स्वीट मेमोरीज ऑफ मुकेश एंड लता विद संगीता मेलेकर और मुख्तार शाह लाइव बैंड के साथ। 29th अगस्त हेच एंड हाई स्कूल हैरो, 30th अगस्त वुडमैनस्टोन स्कूल साउथ लंदन। डिनर फ्रॉम 5 PM, शो स्टार्ट्स एट 7 PM। फॉर टिकट्स एंड मोर इन्फॉर्मेशन कॉल दीपा ऑन 07947561947।

0: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए। दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
1: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 0203773633 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज। व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा?
2: Location, location, location. Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas.
3: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
2: Fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
3: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
3: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danio, prime location,
2: high appreciation.
3: In Dubai.
4: साउथ हॉल देसी स्वाद का असली अड्डा आ गया है।
5: बीकानेर वाला परंपरा भी।
2: बीकानेर वाला में मिलेंगे फेमस छोले भटूरे, टेस्टी स्नैक्स, मिठाई और फैमिली के साथ यादगार मोमेंट्स। आइए 60 किंग स्ट्रीट साउथ हॉल UB2 4DB। कॉल 0779518100।
0: मीनार जूल

0: अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए minarjewelers.com कॉल 02208767627।
1: एशियन अचीवर्स अवार्ड्स फ्राइडे सितंबर 18th एट लंदन हिल्टन पार्क लेन एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो ग्रेटर लंदन
2: द इवनिंग शो विद अश्विनी।

0: वेलकम, दिस इज द सेकेंड आवर ऑफ द इवनिंग शो विद अश्विनी. फैंटास्टिक फ्राइडे मना रहे हैं आप और हम, और आप लोगों का साथ मिल रहा है इस सेकेंड आवर में भी, थर्ड आवर में भी, बिकॉज ये आप सबका बड़ा चहेता दिन बन गया है. अब चहेते दिन में आ जाते हैं कुछ सवाल, कुछ इंटरेक्शन. तो बता दें भाई कि जो हमारी लाइव थियरी है वो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी है. मेरा इंस्टाग्राम है रेडियो वाली अश्विनी, उस पर आपको सारी वो लाइव थियरीज जो आप हर रोज सुनते हैं वो वहाँ देखने सुनने मिल जाएगी. तो इस आवर का सवाल, घर घर की कहानी. ऐसा है कि हम लोग एशियन लोग जो हैं, चाहे कहीं भी किसी भी देश में बड़े हों, लेकिन कुछ कुछ परंपरा प्रतिष्ठान हम ले के चलते हैं अपनी लाइफ में, है ना. तो जितने भी हम लोग आए हैं, माइग्रेट हुए हैं हम, अपने पेरेंट्स जो भी हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, तो फर्स्ट जनरेशन एटलीस्ट जो आई है वहाँ से, वो ना अपनी एक चीज़ शायद फॉलो करते होंगे. सो हम एशियन लोगों में सबसे ज़्यादा प्यार दुलार कब और आता है, मतलब मेहमान घर पे आए उनको एंटरटेन किया, फ्रेंड्स घर पे आए उनको खाना पीना किया, मस्ती की, मज़ा की, लेकिन बाहर आंगन में जाके गेट तक छोड़ना, ये वाली जो एक परंपरा है ना हमारे यहाँ पे, तो वो मेरे यहाँ पे तो एटलीस्ट अभी भी कंटिन्यू होती है. आपके यहाँ पे क्या वो परंपरा चलती है कि आप भी घर से बाहर निकल के गेट तक छोड़ने जाते हैं? अब यहाँ पे तो खैर सामने कार लगी रहती है, बट घर के मेन दरवाजे के बाहर भी क्या आप निकल के उन लोगों की कार तक जाते हैं उन्हें बाय करने के लिए? बताइएगा ज़रूर.
1: Tune in to Leica Gold, London's number one Asian retro station on the Leica Radio mobile app. Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: एक पाउंड के बदले आपको मिलेंगे 130 इंडियन रुपी एंड 25 पैसे. And don't forget to exchange in branch online or SBI Yono mobile app. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and

तमाशा दिखाते हैं, गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, शोर मचाते हैं, उनको तो कुछ नहीं कहते, मगर मगर

जिगर, चैन, आराम, राती, सुबह, दोपहर और शाम, छीन ले जाते हैं और आप चुरा लेते हैं, सामने लूटते हैं और आप बोल नहीं पाते हैं, देखो ना, दर्द, ठेस और जख्म दे जाते हैं, तो आप कुछ नहीं कहते हैं।

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: चलिए मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है। 8:28, लता मंगेशकर की आवाज़ में झुक गया आसमान से। बड़ा ही फास्ट, बड़ा फास्ट था ना ये वाला ट्रैक, मज़ा आ गया ना बिल्कुल उनसे मिली नज़र। भाई फैंटास्टिक फ्राइडे का मज़ा ही ये रहता है कि आप और हम फुल ऑन एंजॉय करते हैं शो, वॉल्यूम भी बड़ा रहता है। आई होप आपके आस पड़ोस के लोग आके आपको कह नहीं रहे हैं कि क्या हो गया, घर में पार्टी शार्टी है क्या, इतना बड़े वॉल्यूम में गीत लगा रखे हैं। तो बता देना कि इवनिंग शो विद अश्विनी है, फ्राइडे में तो होने वाला है मस्ती। ओके सो भाई ऐसा है कि संडे है, मेरा अपना परफॉर्मेंस एक थिएटर प्ले, आप सबकी ब्लेसिंग्स और बेस्ट विशेस चाहिए। मतलब 15 डेज से लगी हुई उसमें, एंड किसी भी आर्ट का एक्चुअली एक ब्लेसिंग होती है कि अगर आप अपनी आर्ट को, अपने पैशन को फॉलो कर पाए। एंड आई हैव लर्न सो मच फ्रॉम द थिएटर प्लेज। जब भी मैं कोई थिएटर प्ले करती हूँ मुझे बहुत कुछ सीखने मिलता है और मुझे अपने आप में भी कितनी सारी चीज़ें हैं पता चलती है। तो एक एक चीज़ ज़रूर आप सबसे कहना चाहूँगे कि अगर कोई कला आप सीखना चाहते थे ना, देखिए उम्र सिर्फ एक नंबर होता है। अगर कुछ सपने आपके रह गए हैं कि कोई कला आपको सीखनी थी, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना था, डांस सीखना था, भाई जिस डांस क्लास, बॉलीवुड डांस क्लास में जिसमें मैं जाती हूँ टू लर्न डांस, 75-year-old आंटी हमारे यहाँ पे आती हैं एंड शी इज़ आ बिगेस्ट चीयर लीडर फॉर ऑल ऑफ अस। सो प्लीज़ हेजिटेट ना करें। हम लोग एशियन कंट्रीज से आते हैं ना, तो हम लोग हेजिटेशन में पूरी हमारी आधी ज़िंदगी तो चली जाती है, आधी पौना पूरी, आई डोंट नो। बट प्लीज़ कोई भी कला अगर सीखना चाहते थे जाइएगा, जो पैशन अभी भी बाकी है। डोंट गिव मी दिस रीज़न ना कोई भी कि अरे कहाँ अब तो हमारा, नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, आई विल नॉट टेक दैट। जैसे आप मुझे सपोर्ट करते हो, इतना प्यार देते हो, इतना दुलार देते हो, आई मीन ग्रैटिट्यूड फॉर दैट, अपने लिए भी करो ना प्लीज़। सो अगले हफ्ते तक आपका असाइनमेंट सबका ये है कि आप सबसे मैं जानना चाहूँगी, नॉट टुडे लेकिन अगले हफ्ते मंडे हम लोग बात करेंगे इसके बारे में कि कौन सी ऐसी कला आप सीखना चाहते थे जो रह गई, एंड आई विल हेल्प यू फाइंड दैट। अगर लंदन में आप हैं तो मैं डेफिनेटली आई कैन हेल्प यू टू फाइंड दैट वन। ओके अगला गीत आप सबको सुना रही हूँ, उसके बाद में हम बात करेंगे ह्यूमन लाइब्रेरीज के बारे में। दिस इज अनदर इंटरेस्टिंग थिंग।
0: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. The sun is out and so are the summer hits on Leica Gold.

0: भाई मिला लिए घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है, 8:36, इट्स 8:36. आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. किशोर कुमार एंड आशा भोसले की आवाज में सत्ते पे सत्ता से फास्ट गीत सुनाया है ना. थक गए अभी, थोड़ा शांत गीत सुनाओ जहाँ पे अभी बैठो कि बहुत डांस वंस हो गया. चलिए ज़रूर. ओके, सो मैं आप लोगों को बता रही थी कि ह्यूमन लाइब्रेरी, ये एक मैंने पोस्ट पढ़ी एंड वाई नॉट टू शेयर विथ यू. सो डेनमार्क में ऐसी लाइब्रेरीज हैं जहाँ पे आप किताब नहीं है किसी एक इंसान को बोरो कर सकते हो. बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा मुझे ये कंसेप्ट, जहाँ पे ऐसे लोग आके वॉलेंटियर करते हैं और वो आपकी बातें सुनते हैं. ना तो कुछ जजमेंट है आपको लेके, ना दिखने, ना बातों से लेके, आप कैसे उठते बैठते कपड़े, नथिंग, ऐसी किसी भी चीज़ का कोई जजमेंट नहीं है. लेकिन जब सवाल जवाब होते हैं तो उसका आंसर जो है इंसान को ऑनेस्टी से देना पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियसली उनके ही मन की जो बातें हैं, उनकी ही जो तकलीफें, उसे दूर करने में लोग उन्हें मदद करते हैं. अब पीपल हु हैव लिव्ड थ्रू एक्सपीरियंसेस, दे अंडरस्टैंड द वर्ल्ड मोर, है ना. जैसे अभी इमिग्रेशन हुआ है, पीपल विथ डिसेबिलिटीज, फॉर्मर अडिक्ट्स, सर्वाइवर्स, पीपल फेसिंग स्टिग्मा, डिस्क्रिमिनेशन. अब इनके पास में ना बहुत सारी स्टोरीज होती हैं शेयर करने के लिए, और ये डरते हैं हम जाके किन से बात करें. लेकिन जब ह्यूमन लाइब्रेरी जैसा कंसेप्ट आता है कि जहाँ पे आप जाके लोगों की मदद कर सकते हैं, तो इससे अच्छा चीज़ और क्या ही हो सकता है, है ना. एंड हु आर द रीडर्स, एनी वन हु वॉन्ट्स टू अंडरस्टैंड अनदर ह्यूमन बींग विदाउट स्टीरियोटाइप्स गेटिंग इन देयर वे. क्यूरियस लोग होते हैं, एम्पैथेटिक लोग होते हैं, बिल्कुल वो जाके ऐसी लाइब्रेरीज के लिए वॉलंटियर कर सकते हैं. अभी सिंपल रूल्स क्या है कि जजमेंट नहीं करना है, किसी को शेम नहीं करना है. नो टॉपिक इज ऑफ लिमिट एज लॉन्ग एज यू आस्क विद रिस्पेक्ट. नाउ दिस क्रिएट्स अ स्पेस मोस्ट पीपल नेवर एक्सपीरियंस इन लाइफ. कितने ही ऐसे लोग होंगे ना हमारी ज़िंदगी में जिनके साथ में आपको लगता है कि कोई जजमेंट नहीं है, आपके मन की बात आप बोल पा रहे हो और सामने वाला सुन रहा है. आई रियली लव दिस ह्यूमन लाइब्रेरी कंसेप्ट, एंड जगह होगी तो मैं जाके डेफिनेटली एनरोल करूंगी.
1: ये है लाइका गोल्ड.
2: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल. एवरी वीकेंड 4-7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ. सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे.
0: भाई नया एपिसोड आ गया है, एपिसोड नंबर 29, इज गोल्ड रियली द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, होस्टेड बाय रवि शर्मा. और ये एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग है जहाँ पे बातें हुई हैं गोल्ड के बारे में. सो जाइएगा, ज़रूर देखिएगा, सुनिएगा. लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजोन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म.
1: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर. दिस इज Ash Winnie ऑन लाइका गोल्ड. travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com.
3: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
3: विजिट travelhubworld.com.
4: Imagine turning your next cake box order into a magical family adventure. This August, every online cake box order is automatically entered into our prize draw to win a family trip for 4 people to Disneyland Paris. So celebrate birthdays, special moments and summer memories with Cake Box. And you could be celebrating in Disneyland too. Order online this August at cakebox.com. Cake Box. Celebrate today and make memories forever. T&Cs apply.
5: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
6: नोक झोक, सीक्रेट्स, अनलिमिटेड लड़ाई और अनलिमिटेड बातें, दुनिया के सबसे अनोखे इस भाई बहन के रिश्ते को सालों साल मीठा बनाता राखी का त्योहार. सेलिब्रेट करें अप- सपनों के साथ, और साथ साथ जैमिन फूड्स की एथनिक इंडियन वैरायटी भी, जहां है खाखरा, नमकीन, भाखरी, चिक्की, सोन पापड़ी, पिकल्स और बहुत कुछ।
4: अवेलेबल एट एथनिक ग्रोसरी स्टोर नियर यू। जैमिन फूड्स विशेस यू ऑल अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन।
3: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
5: Visit mantraholidays.co.uk or call 020-377-3633 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
7: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
8: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. On this week's Leica Extra podcast, Ravi Sharma talks to Minar Jewelers about whether gold is really the best investment.
9: Gold is something which you have in your pocket. It keeps on going up in value. And if you look historically, and on the last 26 years, the price of gold has gone up by 1,895%. No other single item, including property, has gone up as much as gold.
8: Leica Extra is here. Search for our podcast, Leica Extra, on all major streaming platforms. Ashwini, brightening up your weeknights.

हो क्या बात है, मतलब गानों में ऐसे मजे आ रहे हैं कि पैर थिरकना बंद ही नहीं हो रहा। चलिए एक बार टाइम चेक करते हैं, 8:48 हो चले हैं। आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। आप लोगों के मैसेजेस, फीडबैक्स बैक टू बैक आ रहे हैं, कितना आप लोग ये शो एंजॉय कर रहे हैं। एंड आप लोगों की जब आप यादें शेयर करते हैं ना गानों से रिलेटेड, मुझे बड़ा मजा आता है वो कुछ किस्से कहानियां सुनने में। अच्छा, क्या आप जानते हैं कि आप खुद भी एक कहानी है? हाँ, क्योंकि आपकी ज़िंदगी के अनुभव, आपका पूरा जर्नी, आप जिस किसी एज में हैं, कितने सारे किस्से कहानियाँ होंगे आपके पास में सुनाने के लिए, है ना। बड़ा मज़ा आता है ऐसे लोगों के साथ में बैठने में जो किस्से और कहानियाँ इतना रंगीन करके बताते हैं कि एंटरटेनिंग लगता है ना। स्टोरी टेलर्स के साथ में सच में बहुत अच्छा लगता है उनकी स्टोरीज सुनना। नानी दादी ये लोग जिस तरीके से स्टोरीज सुनाया करते थे, कितना एक अच्छा सुहाना अनुभव हुआ करता था हम सब के लिए कि जब घर के एल्डरली लोग कोई ना कोई स्टोरी सुनाते, और होता है हर परिवार में एक ना एक तो कोई ऐसा होता है जो स्टोरीज सुनाते रहते हैं। एंड उन स्टोरी से आप सीखते भी हो, आपकी पर्सनालिटीज़ में भी एडिशन होती रहती है। जैसे कि मुझे स्टोरीज, मेरे पापा बहुत स्टोरी सुनाते हैं, अभी भी सुनाते हैं। मैं उनको हर रोज़ फ़ोन करती हूँ तब एक कुछ ना कुछ स्टोरी मुझे सुनाई देंगी कि पता है मैं आज ये पढ़ रहा था तो मैंने ये किया, ऐसा हुआ। एंड आई ऑलवेज से कि पापा ये जो मैं रेडियो प्रेजेंटर बनी हूँ ना, इसमें आपका बहुत बड़ा हाथ है कि आपसे किससे कहानियाँ सुन के, और द वे ही यूज़ टू ही डिस्क्राइब

0: 166.75 Bangladeshi taka, 88.93 Afghan afghani, 1.36 US dollars, 176.66 Kenyan shilling, 63.62 Mauritian rupee.
1: Leica Radio.
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: Leica Gold.
2: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at £108.57 per gram.
2: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
0: सेकेंड आवर ऑफ फैंटास्टिक फ्राइडे ये भी ख़त्म होने आ रहा है, तो इस आवर का आखिरी गीत मैं आप सबको सुनाने वाली हूँ मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, फिर वही दिल आया हूँ उसे लाखों है निगाह में, है ना, ये गीत तो बनता है, मतलब म्यूज़िक आज का हमारा जो थीम है डांस मस्ती, वहाँ पे भी ये जो हैप्पी हैप्पी सॉन्ग्स होते ना, इनको सुन के भी बड़ा मज़ा आते रहता है। आखिरी आवर में गज़ल या कव्वाली मैं क्या सुनाने वाली, और साथ ही मैंने जो सवाल पूछा था उसका जवाब आप सबने दिया, उसके बारे में बात करेंगे अगले आवर में।
2: Reminisce those classics on Leica Gold. This is Ash Winnie on Leica Gold.
4: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस, उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड, और उत्सव भारत है स्टार भारत।
5: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान, देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम, और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे, तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
6: साउथ हॉल ट्रेवल, auto protected.
7: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागसन।
8: डिस्कवर द मैजिक ऑफ Switzerland with Mantra Holiday Scenic Swiss Tour, from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
9: भारत वंशियों का सबसे बड़ा राष्ट्रीय त्योहार स्वतंत्रता दिवस समारोह, इंडियन डायस्पोरा एंड हाई कमीशन ऑफ इंडिया बड़ी धूमधाम के साथ मना रहे हैं 22 अगस्त शनिवार को लव नाइट सेंटर हेज में। आइए और सबको लाइए फ्री एंट्री, पार्किंग, एंटरटेनमेंट, फूड, भारतीय व्यंजन, ध्वजारोहण और जनगणमन गायन 22 अगस्त शनिवार को सुबह 10 बजे से।
10: Location, location, location. Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
11: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
10: Fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
11: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
10: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
11: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel, prime location,
10: high appreciation
11: in Dubai.
12: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to say everything in English but louder.
13: Four beers, please, garçon!
12: Just like when you amplify your advertising with radio. 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
2: Seven stations, one podcast, one mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0207 132 1458 or sales at leicamedia.co.uk.
14: The Evening Show.

0: मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है। 9:12 हो रहे हैं। वेलकम, दिस इज द थर्ड एंड द आखिरी आवर ऑफ फैंटास्टिक फ्राइडे एंड दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी। मंडे से फ्राइडे रहता है आपका और मेरा साथ, शाम 7 से 10 बजे तक। आप लोग आते हैं, जल्दी आते हैं, लेट आते हैं, अटेंडेंस लगाते हैं, बड़े प्यार से आप लोग मैसेजेस करके बताते हैं कि आपको शो पसंद आ रहा है। तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू, इट मीन्स अ लॉट। इस आवर का आगाज़ हमने किया था जसविंदर नरूला एंड रेमो फर्नांडिस की आवाज़ में। प्यार तो होना ही था, 90s वाले बच्चे खुश, 70s वाले बच्चे भी खुश हुए अभी क्योंकि आशा भोसले की आवाज़ भी लोगों ने मारो, ये वाला जो गीत आप सभी को सुनाया अनामिका फिल्म से था ये वाला गीत, एंड जया बहादुरी उस समय नहीं, जया बच्चन, शी लुक्स रियली क्यूट ना ऐसे उसमें, एंड संजीव कुमार भी। सो या देयर वर सर्टेन एक्टर्स जो बड़े क्यूट और बड़े प्यारे लगते थे उस टाइम पे, है ना, और देयर वर सर्टेन एक्टर्स जो एज से काफ़ी बड़े भी लगते थे ना। अब मैं ये क्यों बोल रही हूँ, तो अब कैसे होता ना कि इंसान अपने आप को कितना वेल ऑफ, मतलब कितना कैरी कर सकता है अपने अच्छे रहन सहन से, उसका आज बड़ा स्पेशल दिन है। तो 21st of August मनाया जाता है मेंस ग्रूमिंग डे। अभी ग्रूमिंग का एक अलग मीनिंग हो गया, लेकिन यहाँ पे इनके कहने का तात्पर्य ये है कि जो मेन जिनका रहन सहन बड़ा अच्छा है, खुद को बड़े स्टाइलिश वे में कैरी करते हैं, कपड़े अच्छे से पहनते हैं, खुद की स्किन की तरफ ध्यान देते हैं एंड अपने अपनी जो पूरी पर्सनैलिटी है उसकी तरफ ध्यान देते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आज मेंस ग्रूमिंग डे मनाया जाता है। इट्स एन अप्रिसिएशन टू ऑल दोज पीपल, ऑल दोज मैन हु कैरी देमसेल्फ वेरी स्मार्टली, है ना, बिल्कुल। ओवर द टाइम ये चीज़ चेंज हुई है कि मेन भी अपनी स्किन को लेके काफ़ी तवज्जो देते हैं, अपने बालों की तरफ ध्यान रखते हैं, अच्छा रहन सहन रखते हैं, एंड थिंग्स हैव चेंज ओवर द टाइम। लाइक हमारे पेरेंट्स के टाइम की जो चीज़ें थी, अब दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट, एंड आई रियली अप्रिशिएट व्हेन पीपल स्पेशली मेन अपने आप का अच्छे से ख्याल रखें, खुद को काफ़ी अच्छी तरीके से स्मार्टली कैरी करें। इट्स अ गुड फीलिंग फॉर योर सेल्फ फर्स्ट, है ना, बाद में बाकी लोगों के लिए होता है। और साथ में आज मनाया जाता है कूल एड डे, पोएट्स डे। जी हाँ, आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई पोएट होगा, फिलहाल तो मैं ही हूँ, एवरी थर्सडे सुनते हैं ना आप लोग मेरी लिखी हुई पोएम। साथ में मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म। जी हाँ, इसके लिए बस हम प्रार्थना कर सकते हैं कि दुनिया में अमन हो, शांति हो। एंड बुलिंग नो वे वीक, तो बुलिंग तो एक्चुअली सभी जगह होती है ना, लाइक राइट फ्रॉम द स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, परिवार में भी चलता है। इट्स जस्ट दैट पीपल कम टुगेदर एंड साइडलाइन की कर दिए जाते हैं कुछ लोग। क्यों करते हैं हम लोग ऐसा, एक्चुअली नहीं होना चाहिए ना आइडियली। एनीवेज, अवेयरनेस के लिए कुछ कुछ दिन बनाए जाते हैं जहाँ पे लोग उस चीज़ को समझें कि जब गलत वे में चीज़ें होती हैं तो उसका इम्पैक्ट किसी की मेंटल हेल्थ पे भी क्या हो सकता है।
1: Ashwini, brightening up your weeknights. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: एक पाउंड के बदले आपको मिलेंगे 130 इंडियन रुपी, and don't forget to exchange in branch online or SBI Yono mobile app. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and

0: चलिए मिला दी घड़ियां, एक बार देखते हैं टाइम कितना हुआ है, 9:26। महेंद्र कपूर और सुधा मल्होत्रा की आवाज में धूल का फूल से सुनाया आप सभी को ये गीत। आर्टिस्ट ऑफ द वीक साहिर लुधियानवी, उन्हीं का लिखा हुआ ये गीत। नेक्स्ट ट्रैक जो आपको सुना रही हूँ राजपूत फिल्म से, किशोर कुमार की आवाज़ में। दिस इज अ थोड़ा हैप्पी हैप्पी वाला सॉन्ग लगता है मुझे। सुनिए आप भी बताइए।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: feel good track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Like a gold.
3: अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो, लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर.
0: दिस इज एश विनी ऑन लाइका गोल्ड.
4: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com.
5: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
4: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
5: विजिट travelhubworld.com.
6: Here at Acorn Insurance, we help taxi drivers like you so you can help people like Thomas.
7: Hey.
6: He needs to get home for bedtime stories because he does the absolute best voices. You help Thomas show he cares and we'll help you take care of business. Acorn Insurance, the UK's largest taxi insurance specialists. Find out more at acorninsure.co.uk/taxi. Acorn Insurance and Financial Services Limited is authorized and regulated by the Financial Conduct Authority.
8: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries, and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
9: Rock.

0: currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: एक पाउंड के बदले आपको मिलेगा 130.55 इंडियन रुपी, 378.67 पाकिस्तानी रुपी, 449.02 श्रीलंकन रुपी, 166.69 बांग्लादेशी टाका, 88.91 अफगान अफगानी, 1.36 यूएस डॉलर्स, 176.58 कैनियन शिलिंग, 63.60 मॉरिशियन रुपी।
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: Gold is currently trading at £108.57 per gram.
0: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
1: चलिए एक बार आखिरी बार मिला लेते हैं घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है। इट्स 39 मिनट्स पास्ट 9, 21st ऑफ अगस्त फ्राइडे। ये पूरा सप्ताह आपने और हमने साथ में बड़े हंसते खेलते गाते हुए, कुछ इमोशनली सोचते हुए, कुछ रोते हुए, कुछ गाते हुए, है ना, ये पूरा वीक निकाला है। सो याद रखिएगा गोल्ड नाइट्स, हमारी वन नाइट सर्विस जरूर सुनिएगा। लाइका रेडियो 90s, लाइका रेडियो पंजाबी, लाइका गोल्ड टू। कल सुबह सवेरे आ जाएंगे हमारे मस्ती भरे दीप राजा और एंड हमारा वीकेंड क्रू रेडी है आप सबको एंटरटेन करने के लिए। मैं मिलूंगी आप सबसे मंडे। सो वीकेंड पे अपना खूब ख्याल रखिएगा, मौसम बदल रहा है, थोड़ी ठंडक आ गई है, तो अपने अपने जैकेट्स साथ में रखिएगा। इस बार गर्मी ने बहुत परेशान किया हम सबको, मौसम बदलता है तो वैसे चेंजेस हम में भी आते हैं। प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ और हमेशा की तरह प्यार, यस यस यस, प्यार दो, प्यार लो। पावर तो किसी को बर्बाद करने के लिए चाहिए ना, आई एम श्योर आप में से कोई भी पावर का यूज़ तो नहीं करता होगा। बड़े प्यारे लोग हैं आप, लाइफ सुंदर है तो उसे कॉम्प्लिकेटेड ना बनाइए। अपने जहन और दिमाग में जो भी बातें हैं प्लीज़ सामने वाले से कहिए। कम्युनिकेशन इज वेरी क्रूशियल इन एनी रिलेशनशिप। सो वीकेंड आ गया है, आराम से, यू नो, अगर पूरा वीक बड़ा हेक्टिक रहा, प्लीज़ बी काइंड टू योर सेल्फ, थोड़ा रिलैक्स हुई है, चिलैक्स हुई है, एंड मंडे से आपका हमारा साथ फिर से होने ही वाला है। ऑन दैट नोट आई हैव टू से लव यू ऑल, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।
0: दिस इज लाइक अ गोल्ड।
2: This superhit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.

0: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM
1: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत
2: Ready UK. Snell Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi and more surprises on the night. Expect music, madness, family entertainment and non-stop laughter. Sunil Grover Live UK Tour 2026 happening on the 29th of October at the Over Arena Wembley in London.
3: 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
2: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
3: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
4: Function rakha hua hai.
5: Celebrate Krishna Janamashtami in a truly vibrant way. Join us on Sunday the 30th of August from 2 PM to 8 PM at Navnath Centre, Printing House Lane, Hayes, UB3 1AR. Live music, Ramayan play, Ras Leela, delicious food, fun fair, shopping and free entry with free parking. Book a stall for your business before the 15th of August by calling Ramesh Shah on 07742 045 154. Exclusive radio partner, Leica Radio Network. This ad is sponsored by Jamin Foods.
6: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे। कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस। कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 02089223444 24-hour line.
7: Imagine turning your next cake box order into a magical family adventure. This August, every online cake box order is automatically entered into our prize draw to win a family trip for four people to Disneyland Paris. So celebrate birthdays, special moments and summer memories with Cake Box. And you could be celebrating in Disneyland too. Order online this August at cakebox.com. Cake Box. Celebrate today and make memories forever. T&Cs apply.
8: मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। टीसीएस अप्लाई।
0: बॉलीवुड के लेजेंड कलाकार सिर्फ लाइका गोल्ड पर।

0: surplus, ab her stop loss.
1: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
2: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवरटाइज करने के लिए कॉल करें लाइक आर रेडियो सेल्स ऑन 0207-132-1458 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk।
3: ताज़ा करें अपनी यादें लाइका गोल्ड के साथ। और

0: सॉफ्ट लॉस अब है स्टॉप लॉस।
1: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Download the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows.
2: Leica Gold पर हर रात की यही रीत, पुराने मगर सदाबहार गीत।

0: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ